ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक सम्वत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 55 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे।

0: के और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। आराधना मन की साधना, मन का एकीकरण, किसी दिव्य शक्ति की ओर उस ध्यान को लगाना जो हमें संयम भरते हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रण देते हैं और हमें धनात्मक ऊर्जा का संचार कर हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में महान वही बन पाता है जो इन्हीं आदर्शों पर अपने जीवन को संचालित करता है। आज मंगलवार के दिन आराधना की शुरुआत आज के दिन के पूज्य प्रभु श्री हनुमान जी की स्तुति से

भक्ति, भक्ति स्वयं आनंद है, परमानंद है, क्योंकि भक्त के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य आसक्तियों से बहुत दूर हो जाता है। दुख का कारण ही तो मोह है ना, वो चाहे भौतिकता के लिए हो या फिर भौतिक जो हमारा आवरण है उसको बनाए रखने के लिए हो। जिस मनुष्य ने भौतिक संसाधनों को मात्र जीवन जीने का एक साधन मान लिया और वो जिस स्वरूप में जहां जिस तरीके से मिला उसका उपभोग कर अपने जीवन की नियति मात्र भक्त के मार्ग पर संचालित करता है, उसका जीवन स्वतः सार्थक हो जाता है। उसके जीवन से भटकाव कोसों दूर रहता है, क्योंकि उसके सर पर वरद हस्त होता है परम पिता परमेश्वर का। यद्यपि सभी उसी परमात्मा की संतान हैं, लेकिन सन्मार्गी पुरुष, सन्मार्गी मानव सदैव ईश्वर की अनुकंपा को प्राप्त करता है। वहीं दुराचारी पुरुष अपने कर्मों का फल भोगकर दुर्गति को प्राप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल।

0: की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

भक्ति हमारे अंतःमन में, हमारे समाज में एक उच्च स्थान है, सम्मान का स्थान है, और इस मार्ग पर चलने वाले संत सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसी श्रद्धा का गलत लाभ उठाकर गलत आचरण करते हुए इस चोले को पहन लिया, तो फिर वो अपने जीवन को और गलत दिशा की ओर ले जा रहा होता है। क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में चढ़ाया गया चढ़ावा नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हम जहाँ अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, यदि वहाँ ईश्वर हैं, तो जहाँ हम गलत कार्यों को कर रहे होते हैं, गलत चोला ओढ़कर भोले भाले लोगों को ठग रहे होते हैं, वहाँ पर भी तो ईश्वर होते हैं। आवश्यकता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे नैतिकता को बनाए रखें, हमें सदाचरण दें, हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें।

0: ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लेकर चले, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए स्वामी हरिदास के विचार।
1: संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की संगीत माधुरी एवं भक्ति प्रेम रस से पगी उनकी वाणी युगों से भक्तों और संगीतज्ञों के हृदय को अद्भुत आनंद लहरी में डुबाती रही है। वे सच्चे अर्थों में तंत्री नाद कवित्त रस एवं सरस राग की प्रतिमूर्ति थे। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने तानसेन के माध्यम से स्वामी हरिदास का दर्शन किया था और उनके अपूर्व संगीत को सुनकर वो आत्मविभोर हो उठे थे। वस्तुतः संगीत काव्य और भक्ति प्रेम रस से संगठित

0: हरिदास का व्यक्तित्व मध्य युग के संतों में अतिशय विलक्षण और अद्वितीय था। उनकी वाणी में एक ओर जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों का रस छलकता दिखलाई पड़ता है, वहीं दूसरी ओर विश्व की नश्वरता और नटराज की नटी माया के प्रपंच का यथार्थ चित्र हृदय को विचलित कर देता है। उनके प्रेम सागर का ये चित्र कितना भव्य और महान है। वे कहते हैं, ये प्रेम सागर कितना गहरा है जिसमें अपार रूप रस भरा हुआ है। भला ऐसे सागर का किनारा कहाँ मिल सकता है? सचमुच ऐसे प्रेम सागर को देखकर बड़े बड़े ज्ञानियों को ये लगा कि ये ज्ञान इसके समक्ष व्यर्थ है। सत्य तो ये है कि अहम मन्यता से युक्त पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होता। अहम को त्यागने पर ही प्रेम रस का सत्स्वरूप हमारे समक्ष झलकने लगता है। किंतु अज्ञानी जीव गली गली और हाट बाजार में बातें बनाता फिरता रहता है और ये जड़ अपने जीवन को इस प्रकार नष्ट कर देता है। हरिदास को पूर्ण विश्वास है कि बिहारी का प्रेम जीवात्मा को भटकने नहीं देता, अतः उसे छोड़कर अन्यत्र जाना श्रेयस्कर नहीं है। स्वामी हरिदास ने ये अनुभव करके जान लिया था कि भगवत प्रेरणा से ही ब्रह्मलोक या शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार तृण हवा के वश में नहीं है और वो जहाँ चाहती है उसे उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा के वशीभूत ये जीव है। इसलिए बिना बिहारी के ये जीव यशस्वी नहीं हो सकता। आत्मानुभूति से स्वामी जी को स्पष्ट प्रतीत हुआ कि ये जड़ जीव परतंत्र है और भगवत कृपा से ही इसकी मुक्ति संभव है। वे इस संबंध में कहते हैं, हे हरि, जैसे तुम मुझे रखते हो उसी प्रकार मैं इस संसार में रहता हूँ। यद्यपि मैं अपना अभीष्ट पूरा करना चाहता हूँ, किंतु उसे कैसे पूरा करूँ, क्योंकि तुम मुझे पकड़े रहते हो। मैं पिंजड़े के पक्षी की भांति उड़ना चाहता हूँ, किंतु उड़ नहीं पाता और उसी में तड़फड़ाता रहता हूँ। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे और उनकी उपासना गोपी भाव या सखी भाव की थी। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए राधा के यश और उनके अलौकिक सौंदर्य का निरूपण हरिदास जी ने स्थल स्थल पर किया है। वे राधा की महानता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, हे राधे, तुम्हारा यश कोटिशः ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम्हारे अगाध सौंदर्य और शोभा का वर्णन मुझसे नहीं करते बनता, और इस प्रकार साधन करते करते मेरे न जाने कितने जन्म बीत गए। आज तुम्हारे सौंदर्य श्री के देखने का ये दिन मैंने बहुत बड़ी साधना और कर्म के द्वारा ही प्राप्त किया है। कहीं कहीं श्यामा और श्याम के प्रेम भाव की समान स्थिति स्वामी हरिदास के मानस को जिस समाधि अवस्था में पहुंचा देती है वो विचारणीय है। इनके मानस ने राधा और कृष्ण की एक रूपता को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसे इस पद में देखा जा सकता है। प्यारी जैसे तेरी आँखिन में मैं हूँ, अपनों पो देखत तैसे तुम देखत हो किन्हो नहीं। अर्थात, हे प्यारी, जैसे तेरी आँखों में मैं अपनत्व का अनुभव कर रहा हूँ, क्या तुम्हें भी इसका अनुभव हो रहा है या नहीं? इसके उत्तर में राधा ने कहा है, हों तो सो कहो प्यारे, आँखें मूंद रहो, लाल निकसी कहाँ जाहीं। अर्थात, हे प्रियतम, मैं आँख बंद कर रही हूँ, तुम अब निकल कर कहाँ जाओगे?
1: अभी आप स्वामी हरिदास के विचार सुन रहे थे। अब विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक बातचीत। विषय है भूमि सुधार में कार्बनिक खेती की उपयोगिता। विशेषज्ञ डॉक्टर राणा कृष्णपाल सिंह से बातचीत कर रहे हैं राकेश कुमार मौर्य। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे न, चाहे जौन फसल लेथिन भाई वह में देखे में आवत है कि लगातार फसल खेते में ली जात बा, साथे साथे असंतुलित खाद का भी प्रयोग कई जात, खास करके ज़्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग कई जात, कीटनाशक प्रयोग कई जात बा। ऐसे धीरे धीरे माटी के उपजाऊ क्षमता कम हो जात, हमें जीवांश के भी कमी हो जात बाटे है। तो इस सब के देखते हुए आज का कहथिन जौन बातचीत के विषय बा कि भूमि सुधार कैसे हो, हमें कार्बनिक खेती का उपयोगिता हो सकत है, इसमें बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन राणा कृष्णपाल सिंह जी, जौन की सबके जानकार बाटन है। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान भाई के ये बतावें कि भूमि सुधार में कार्बनिक खेती का उपयोगिता हो सकत है, बतावें आप।
2: चूँकि हम जानते हैं कि हमारी खेती जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और इस कारण हम लगातार सघन खेती तथा उर्वरकों के प्रयोग से अधिक उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने जा रहे हैं।
1: जी
2: तो इस कारण से जो है जो भूमि की जैविक और भौतिक दशा है उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा
1: जी,
2: है।
1: जी
2: तो इससे भूमि में जैविक पदार्थ तथा आवश्यक तत्व तो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास, सल्फर और विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक सूक्ष्म तत्व तो हैं उनकी कमी होती जा रही है। और इसके कारण भूमि की जो है उर्वरकता लगातार गिरती जा रही है। तो इसके रोकने के लिए जो आवश्यक कदम है वो है कि रासायनिक उर्वरक के साथ साथ हम जो है कार्बनिक और जैविक खादों का समन्वित प्रयोग करें।
1: अब कार्बनिक खाद के बारे में बताएं कि कार्बनिक खाद का होता है।
2: थोड़ा सा जैविक और कार्बनिक खादों के प्रयोग से जो है इसमें भूमि में समस्त पोषक तत्व उपलब्ध होते रहते हैं।
1: अच्छा।
2: और इसके साथ साथ जो भूमि सुधार की दशा में है उससे भी इसमें काफी फायदा होता है। अब इसके प्रयोग से भूमि में जैसे जल निकास जो बड़ा जरूरी होता है, वायु संचार में सुधार आता है, और जो घुलनशीलता जो होनी चाहिए जमीन में वो बढ़ती जाती है।
1: अच्छा।
2: इससे भूमि की जो है जल धारण क्षमता यानी ज्यादा जल्दी जल्दी पानी न देना पड़े वो भी बढ़ती जाती है। और इस प्रकार अगर हम इसको समन्वित उपयोग करें तो पर्यावरण जो हमारा है वो भी सुरक्षित रहता है, उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता।
1: अच्छा,
2: है
1: अच्छा,
2: तो इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा टिकाऊ खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ हम कार्बनिक एवं जैविक खातों का समन्वित उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसमें जो कार्बनिक खाद जो हम प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं उसमें जैसे गोबर की खाद है,
1: हम
2: सभी जानते हैं गोबर की खाद पशुओं के गोबर मल मूत्र इत्यादि को सड़ने से तैयार की जाती है।
1: जी
2: इसके लिए जो है गड्ढा खोदकर उसमें गोबर डाली जाती है, बाद में पॉलीथीन से ढककर 3 इंच की मिट्टी का लेप लगा देते हैं किसान भाई, और गोबर की खाद को अगर गड्ढे में नहीं गलाया जाए तो इससे आवश्यक तत्वों एवं नमी में नुकसान होता है। तो इसको तैयार करने के लिए कम से कम हमारे 8 से 12 महीने किसान भाइयों को समय लगता है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम जितने भी महत्वपूर्ण तत्व है वो किसान भाइयों को मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर गोबर की खाद को हम जो है पूरी तरह से सड़ाए बिना ही उपयोग करेंगे तो उसमें दीमक फसल में लगने का ये खतरा बना रहता है।
1: वैसे भी किसान भाई घोर गड्ढा बनावत है तो हमें गोबर डाल के सड़ावत है, ज्यादातर वही खाद इस्तेमाल होते हैं। अब बात आवत है दूसर कौन खाद है।
2: अब इसमें एक जो है हरी खाद जो है हम सभी जानते हैं, जैसे हरी खाद तैयार करने के लिए फलीदार फसल जैसे ढेंचा, ग्वार, सनई, मूंग ये सब आदि को खेत में जो है वो दबाकर सड़ाया जाता है। जो हरी खाद के खेत में सड़ने के समय कार्बनिक अम्ल पैदा होता है और ये कार्बनिक अम्ल जो है वो पीएच मान को घटा देता है।
1: अच्छा,
2: और इससे जो है वो जो पोषक तत्व हैं उनकी सहजता से उपलब्धता जो है वो भूमि को बन जाती है और इससे भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा इसके साथ ही साथ हरी खाद के प्रयोग से जो है भूमि की जल धारण क्षमता वो बढ़ती जाती है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और तीसरा जो प्रमुख है इसमें कंपोस्ट खाद है, जो सभी जैविक खादों की तुलना में कंपोस्ट बनाना ये सबसे किसान भाइयों के लिए कम खर्च वाला है।
1: जी।
2: कंपोस्ट खाद बनाने के लिए विभिन्न पदार्थ जैसे आपके भूसा है, पराली है, फसल का बचा हुआ भाग है, फैक्ट्रियों का बचा हुआ कार्बनिक कूड़ा करकट, जैसे गन्ने की जो है वो निकलती है मैली,
1: खोई,
2: इसको तो इसको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इसमें जो है एक 8 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा खड्डा जो है इसको जो है इसमें कूड़ा करकट से भर देते हैं, फिर उसके ऊपर जो है गोबर डाल देते हैं थोड़ा सा जो है, और फिर थोड़ा सा 5 किलोग्राम राख फास्फेट और ये गन्ने की मोलासिस जिनको वो बोलते हैं ना, वो गंदगी जो निकलती है मोलासिस, उसको डाल करके और उसके बाद फिर इस पर बढ़िया नमी जो है वो पानी का छिड़काव करके लाते हैं, और इसमें फिर 3-4 महीने का समय लगता है, लेकिन इस दौरान ये किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि अच्छी कंपोस्ट बनाने के लिए उसको कम से कम 3 बार जो है वो पलट दें, 15-15 दिन
1: पूरी तरीके सड़ जाए
2: तो एक 15 दिन, फिर 15 दिन और फिर एक 30 दिन के बाद, और इससे अच्छी जो है कंपोस्ट खाद बन जाएगी और उसको जो है किसान भाई उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा,
1: लागत भी नहीं, लागत
2: बहुत कम लागत इसमें है। और इसके साथ साथ एक और जो हम केचुए की खाद बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट जो है,
1: जी जी,
2: है ना, उसकी मदद से भी एक जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, इसमें केचुए जो है वो फसलों के अवशेष, घास फूस, कूड़ा करकट, गोबर, बची हुई साग सब्जी, फल फूल आदि खाकर वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं।
1: जी जी,
2: तो इसमें कम से कम 1 वर्ग मीटर के लिए हमको 1000 करीब संख्या में केचुए अगर हम डाल दें तो 2 से 3 महीने में कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है। और ये
1: केचुआ अलग तरीके के होते हैं जो
2: नहीं, ये सामान्य जो केचुए होते हैं इन्हीं का उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा,
2: और ये
1: अच्छा।
2: बहुत जल्दी इनकी संख्या बढ़ती है इन्हीं का उपयोग करके हम जो है
1: केचुआ बेच के भी फायदा ले सकते हैं,
2: फायदा वो अलग तरह से किसान भाई जो है वो कर सकते हैं।
1: जी जी,
2: अब इसके साथ साथ एक और आवश्यक जो ये सीवेज होती है ना हमारा, इसका जो पानी है और इसकी जो सिल्ट है, इसका भी उपयोग कर करके किसान भाई वो फसल में फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड, कैडमियम, तो उसको हम फास्फेट से ट्रीटमेंट करके अलग कर लें और उसके बाद उसको खाद के रूप में हम प्रयोग करें, ये बहुत इससे अच्छा रहता है।
1: अच्छा,
2: तो ये कुछ जो कार्बनिक जो है वो खादें हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई फायदा ले सकते हैं। और इसमें अब जो हमारा भूमि सुधार में कार्बनिक खेती की जो है उपयोगिता है, उसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि कार्बनिक खादों के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में सुधार होता है, जिससे भूमि की जो जल धारण करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है
1: जी।
2: और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो कि कार्य करते रहते हैं उसकी बढ़ाने के लिए जो है वो
1: जी
2: वो मिल जाते हैं, और इस प्रकार मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है, जिसका सीधा असर जो पड़ता है किसान भाइयों की उत्पादन जो कृषि की है उसमें पड़ता है।
1: अच्छा,
2: और उससे जो है अधिक से अधिक लाभ जो है हम ले सकते हैं।
1: तो आपका है मतलब कि जितना भी पोषक तत्व हो थे जमीन के लिए उस सब ऐसे मिल जाते हैं।
2: तो अगर किसान भाई ध्यान दें कि हम जो उर्वरक के साथ साथ जो है वो कार्बनिक जो खादें हैं उनको भी मिला करके उनका संतुलित प्रयोग, समन्वित प्रयोग करें तो उससे अधिक से अधिक लाभ इनको मिल सकता है।
1: रासायनिक खाद जो किसान भाई डाला थे उनका कम कैसे करते हैं,
2: उसको कम कर लें जो है, और उसके जगह पर जो है हमारी ये कंपोस्ट खाद है, कार्बनिक गोबर वाली जो खाद है इसका उपयोग, और जो हरी खाद सड़ा करके इसका उपयोग करें तो बहुत अधिक उनको लाभ मिल सकता है। जो उर्वरा शक्ति जमीन की है वो लगातार बनी रहेगी और उसकी जल धारण क्षमता, ये सारी चीजें बहुत ठीक प्रकार से बनी रहे।
1: तो फिर जौन भी हमें फसल हो वो भी बढ़िया हो,
2: वो बहुत बढ़िया,
1: प्रदूषण रहित होगी
2: जो है, उत्पादकता बढ़ेगी और आर्थिक पक्ष भी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि लागत कम लगेगी इसमें जो है।
1: जी जी, तो हम तो कही कि राणा कृष्णपाल सिंह जी, आप आयन भूमि सुधार में कार्बनिक खेती की उपयोगिता का है बहुत अच्छे से बताए, अगर किसान भाई इस तरीके से काम कर ही समन्वय बनाएगी जैसे आप बताएं, तो हम तो कहीं कि उनका खेती भी मजबूत हो, फसल भी बहुत अच्छी हो और लागत भी कम लागे। तो आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप राणा कृष्णपाल सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत सुन रहे थे, विषय था भूमि सुधार में कार्बनिक खेती की उपयोगिता। अब अनुमति दीजिए।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की वार्ता, कमर दर्द कारण और उपचार।
1: कमर दर्द आज एक सामान्य सी बीमारी है जो अक्सर लोगों में देखी जा सकती है। एक स्टडी के अनुसार भारत में करीब 60% लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी पीठ दर्द की समस्या का सामना करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अक्सर ही यह समस्या रहती है। कमर दर्द मुख्यतः तीन तरह का होता है। पहला, पोस्चरल, गलत तरीके से बैठने या खड़े होने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ कोशिकाओं में स्ट्रेस आ जाता है और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, इसे पोस्चरल सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा है डेरेंजमेंट सिंड्रोम, हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है और इन डिस्क में एक तरल पदार्थ होता है जिसके गड़बड़ होने से दूसरे ऊतकों यानी टिश्यू पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, इसे स्लिप्ड डिस्क के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा है डिसफंक्शन सिंड्रोम, इस तरह की समस्या हमारी मांसपेशियों, जोड़ों एवं स्नायु के शिथिल हो जाने या कमजोर होने की वजह से होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कमर दर्द के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि मानसिक तनाव, गर्भधारण, केवल बैठे रहने वाली जॉब या काम, बढ़ती उम्र, अत्यधिक चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, जरूरत से ज़्यादा शारीरिक व्यायाम, धूम्रपान, बैठने का ढंग सही ना होना, कोई भारी या ज़्यादा वजन वाली चीज़ का उठाना, गलत तरीके से सोना, चोट लगना इत्यादि। ऐसे बहुत से आसान तरीके हैं जिनसे कि पीठ दर्द को दूर किया जा सकता है। अगर आपको कमर दर्द है तो थोड़ा आराम कीजिए, जिससे आपकी रीढ़ को पोषण मिलेगा और शरीर को भी आराम मिलेगा। कई बार कुछ वजन का काम करते हुए रीढ़ में छोटी मोटी चोट लग जाती है और आराम करने से चोट रिकवर हो जाती है। ठंडा और गर्म एक थेरेपी है जिसमें लोग गर्म पानी को किसी बोतल या अन्य चीज़ में भरकर पीठ पर रखते हैं, वहीं कुछ लोग ठंडे पानी या बर्फ़ के टुकड़े भरकर पीठ पर रखते हैं। ऐसा करने से कमर दर्द में राहत मिलती है। कमर दर्द के लिए बहुत सारी आसान कसरतें हैं जिन्हें आप डॉक्टर की सलाह या किसी ट्रेनर की देखरेख में कर सकते हैं। ध्यान रहे, व्यायाम का गलत तरीका आपके दर्द को बढ़ा भी सकता है। कमर दर्द अगर लगातार रहे तो आपको अपने सोने की स्थिति में भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करवट से सोते हैं तो अपने पैरों के बीच में एक तकिया रखकर सोएं। अगर आप कमर के सहारे सीधे सोते हैं तो अपने घुटनों के नीचे तकिया लगा लें, एक पतला तकिया कमर के नीचे भी लगा लें तो आराम मिल सकता है। जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जहां लगातार बैठे रहना पड़ता है, उन्हें कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है। कोशिश करें कि हर आधे पौन घंटे में बीच बीच में थोड़ा उठकर चल फिर लें, क्योंकि लगातार बैठे रहने से शरीर की बहुत सारी मांसपेशियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा आपके बैठने का तरीका भी दर्द का एक बड़ा कारण है। कोशिश करें कि सीधे तनकर बैठें तथा कमर को ज़्यादा ना झुकाएं। योग करने से आपको कमर दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इंटरनेट पर इसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी उपलब्ध हैं जहां से आप योग करना सीख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए मरीजों को पौष्टिक आहार जैसे कि दूध, जूस, फल, हरी सब्जियाँ, ऐसा भोजन करने की सलाह दी जाती है जिसमें विटामिन, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी जीवन शैली बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग काफ़ी देर तक सोते हैं तथा दिन भर एक ही मुद्रा में मोबाइल या कंप्यूटर को बैठकर देखते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को सुधारिए और लगातार एक जगह बैठे ना रहिए। कई बार मानसिक तनाव की वजह से भी पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है, इसीलिए सकारात्मक सोचें और मन को शांत रखें। कुछ ऐसे लक्षण जिसमें आपको तत्काल डॉक्टरी सलाह लेने की सलाह दी जाती है वो है, जैसे कि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद अगर कमर में अत्यधिक दर्द हो जिससे कि आपको अपने निचले हिस्से को हिलाने में दिक्कत हो, अगर कमर दर्द के साथ आप खड़े ना हो पा रहे हो या फिर आपके पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन आ रहा हो, अगर आपको कमर दर्द के साथ बुखार हो या फिर आपको पेशाब करने में मुश्किल हो या आप पेशाब को रोक पाने में असमर्थ हों, तो आपको तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपके डॉक्टर

0: जरूरत के अनुसार आपके एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके इलाज में मरीजों को फिजियोथेरेपी या स्पाइनल मैनिपुलेशन करने की सलाह दी जाती है। यह एक बेहतरीन सुरक्षित उपाय है जिसकी मदद से आप अपने कमर का दर्द दूर कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आए आज हमने आपको सुनवाया डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की वार्ता, कमर दर्द कारण और उपचार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:52 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 9:30 बजे और खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे। 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनिएगा सुबह 7:30 बजे और दिन में 12:15 बजे। रात 10:30 बजे पंडित जसराज का ख्याल गायन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में एसके घोष के गाए भजन गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर सुमधुर भाषिनी तिवारी के स्वर में भजन और गीत सुनवाए जाएंगे।

लोक मधुरी कार्यक्रम होगा दिन में 10:05 पर। इसके अंतर्गत आनंद लीजिएगा बाबूलाल दिवाकर और वर्षा तिवारी के स्वर में लोकगीतों का। कुछ और लोकगीत सुनाएंगे दिन में 2:30। कलाकार होंगे पंचम लाल यादव, प्रतिमा मिश्रा, विष्णु राजा और साथी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 10:30। अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। बढ़ती किशोरियों के पोषण का कैसे रखें ध्यान, अर्चना शुक्ला की ये वार्ता। महिलाएं सुनेंगी अपने कार्यक्रम पनघट में दिन में 12:15। साथ ही वर्षा तिवारी के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। धरती के गीत होंगे 5:00। स्वर होगा छेदी लाल और साथियों का। युवा साथियों का कार्यक्रम जीववाणी लेकर के आएंगे 5:15। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुनेंगे 6:30। इसके अंतर्गत रामायण पाठ होगा, साथ ही बाबूलाल दिवाकर के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।

सवेरा होते ही रावण एक बार फिर युद्ध के लिए आ पहुंचता है। वानर भालुओं की सेना विकराल रूप धारण कर उस पर टूट पड़ती है। विभीषण को रावण के न मरने का रहस्य मालूम है, उसकी नाभि में अमृत है। विभीषण से ये भेद पाकर श्री राम ने जैसे ही वाण संधान करना

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर रविंद्र साठे का था और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म काजल से। रचना साहिर की है, संगीत रवि का, आवाज लता मंगेशकर की है।

और लीजिए सुनिए फिल्म लगान से ये भक्ति रचना। रचना जावेद अख्तर की है, संगीत AR रहमान का, आवाज़ें हैं उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की।

अभी आप फिल्मों से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में

0: वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
2: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वो देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी

0: शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अयोध्या में दो दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के दो विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
2: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
1: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भास्कर दास का राग अहिर भैरों में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भास्कर दास का राग अहिर भैरव में वासुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। लीजिए आप सुनिए राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी पर बजाई ये भटियाली धुन।

0: अभी आप राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी पर बजाई ये भटियाली धुन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधान

0: मंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी

0: चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने

0: की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी

0: to VC Pramod.
1: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, "No power can bend India." Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGE and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Dom Dom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज्रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ज़रे मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों, जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस, पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन

0: बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं, और वेडिंग के लिए भी मैं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर ज़र्रे मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
0: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डॉ सरमा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के छह रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आज़ाद तजारती माहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी

0: ई हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर ए के एम वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वह 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सर चश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि वीवीजी रामजी एक्ट मुल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़र मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाकिदा मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार प्रयागराज का एक और ताजा तरीन अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र। कैसे हैं आप? यकीनन बेहतर होंगे। चाय की चुस्कियों के साथ सुन रहे होंगे हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। चलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज जीवन को और बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं हम सब, पर इस बेहतरी का पैमाना क्या है? कहीं पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के भौतिक संसाधनों की तरह या उससे भी अच्छा पाने की ख्वाहिश तो नहीं? एक समय था जब ज्यादा आबादी रोटी के लिए श्रम करती थी और आज एक बड़ी आबादी रोटी हजम करने के लिए श्रम करती है। शरीर को क्रियाशील स्वस्थ रखने के लिए जब श्रम जरूरी ही है तो फिर अपने दैनिक कार्यों हेतु क्यों न श्रम किया जाए? हमारे काम भी हो जाएंगे, हमें किसी दूसरे की ज्यादा मदद की आवश्यकता भी नहीं होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दरअसल प्रकृति ने अपना एक स्वरूप गढ़ा बिल्कुल

ऐसा जो जीवन के लिए अनुकूल हो, जीने के लिए हरी भरी, अधिक ऑक्सीजन उत्पादक संस्कृति बनाई, वन बनाए, पीने के लिए जो हमें पानी चाहिए होता है उसके लिए स्वच्छ नदियां बनाई, भोजन के लिए अनेक वनस्पतियां और फल थे। धीरे धीरे विकास की कड़ी में पेड़ों की छाल लपेटने वाला मानव आज अंतरिक्ष की सैर कर रहा है। कई नए उपग्रह खोज डाले गए, पर अब तक कोई ऐसा दूसरा पिंड नहीं मिला जहां जीवन हो, क्योंकि वहां जीवन अनुकूल प्राकृतिक संरचना ही नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर है। तो जिस जीवन को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए हम लगातार उन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाए और जीवन पर ही संकट आ जाए, तो हमारा यह विकास किस काम का? जीवन और जीवन में विकास तो तब ठीक बात है जब जीवन हो। यदि हम उन प्राकृतिक संसाधनों को ही तहस नहस कर देंगे जिससे कि पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ हो, तो हमारी पृथ्वी भी दूसरे ग्रहों की तरह ही हो जाएगी, जीवन विहीन। तो जीवन में विकास के लिए पहले आवश्यक है कि जीवन हो। आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर का पिघलना कोई छोटी बात नहीं है। समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा, भूभाग जो समुद्र तल से बाहर निकला हुआ है, जहां जीवन है, वो डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है, आज हम देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले ही कोविड के काल से हम लोग गुजरे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत की आवश्यकता हमने तब महसूस की थी किस तरीके से, और हमें ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, इन पेड़ पौधों से। और हम और अच्छे फर्नीचर के लिए, और अच्छे बेड के लिए, और अच्छी लकड़ी की नक्काशी के लिए लगातार, कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं कि जो लगभग अब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। कई सारे पशु पक्षी जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से सहयोग करते थे, आज वो दिखना बंद हो गए हैं। आज हम आप जो भी लोग हैं जिन्होंने 20-25 साल पहले का जीवन देखा है, बहुत सारे पक्षी ऐसे थे जो हमारे घरों की मुंडेर पर आकर, हमारी छतों पर आकर आवाज लगाते थे, वो आज नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। और यदि ये संतुलन बिगड़ गया तो जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। इसी जरूरत को समझने के लिए हमारी सरकार भी हर साल कोशिश करती है, इतने ज्यादा वृक्षारोपण कराए जाते हैं। हमसे भी अपेक्षा की जाती है, हमें भी प्रेरित किया जाता है कि हम भी कुछ पेड़ पौधे रोपें। सिर्फ रोप देना ही काफी नहीं है। आप देख रहे हैं कि भूमि का जल स्तर कितना नीचे जा चुका है, तो फिर उन पेड़ पौधों को बनाए रखने के लिए, उन्हें जीवित रखने के लिए उनके देखरेख की भी आवश्यकता होती है। और ये समझिए कि हम उन पौधों को नहीं पाल पोष रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम एक नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हमें जैसा जीवन मिला है, कम से कम वैसी संरचना तो हम आने वाली पीढ़ी को दे जाएं, नहीं तो हम सदैव ऋणी रहेंगे उनके, और उनके दोषी भी रहेंगे। इन्हीं सब बातों को याद दिलाने के लिए आज हम लोग सब मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो जैव विविधता है उसको बना करके रखें। जैव विविधता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी जीव की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, उससे तो हमारे किन्हीं चीज़ों का नुकसान होता है, हमारी फसलों का नुकसान होता है। लेकिन जब व्यापक रूप से हम देखेंगे तो तमाम जीव जंतु, तमाम पेड़ पौधे, आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि प्रकृति की ज़्यादातर वनस्पतियाँ किसी न किसी तरह की औषधि ही हैं। तो यदि हम इनको ठीक तरीके से समझ लेंगे, तभी हम अपनी प्रकृति को संरक्षित कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इसी महीने की 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जीवन की विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, उनके मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक

रुख किया जाए, हर नागरिक अपनी कर्तव्यों को समझे। अधिकारों को जानना तो ठीक बात है, लेकिन अपने कर्तव्यों का बोध होना भी बहुत आवश्यक है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और जैव विविधता से मिलने वाले सभी लाभों के प्रति लोगों को आकर्षित करता है और प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को समझें। सिर्फ एयर कंडीशन कमरों की ही नहीं बल्कि पीपल के पेड़ की छांव की ठंडक की भी अनुभूति करें, तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में थोड़ा वक्त हम लेते हैं आपके संदेशों को शामिल करने के लिए भी। तो आज हमें जो संदेश मिले हैं उनमें जो सुविचार आए हैं उसमें एडवोकेट वारिस अली जी लिखते हैं कि दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और इखलाक अच्छा हो तो अपने दूर नहीं होते। जी हाँ, इखलाक को अच्छा रखना, ईमान को अच्छा रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम किसी से छोटे हैं तो बड़े की बात को बर्दाश्त कर जाएं और अगर बड़े हैं तो छोटे की गलती को माफ़ कर जाएं। अगर ये परंपरा हम अपने मन मस्तिष्क में बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अपने हमसे कभी दूर नहीं होंगे। और वक्त ऐसा पहिया है जो हर किसी को अपने द्वारा की गई गलती का एहसास कभी ना कभी करा ही देता है। दिनेश वर्मा जी रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखते हैं और आपके साथ करुणा वर्मा जी भी हैं। आप लिख रहे हैं कि जीवन में किसी को दोष मत दीजिए, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर के जाते हैं। जी हाँ, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कहीं धोखा नहीं खाएंगे, कहीं हमको झटका नहीं लगेगा, तब तक हम सावधान कैसे होंगे, उस चीज़ के बारे में और बेहतर कैसे जानेंगे। तो दोष देने से बेहतर है कि हम नए तजुर्बों से अपने जीवन को संवारते चलें। नीरा त्रिपाठी जी लिखती हैं, परिपक्वता आने के बाद ये महसूस होता है कि तर्क देने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जहाँ तर्क की बात करने की आवश्यकता वहाँ तो तार्किक बातचीत की जा सकती है, लेकिन जहाँ कुतर्क ही चल रहा हो वहाँ मौन रहने में ही बेहतरी है, ये हमारा नीति शास्त्र भी कहता है। एक संदेश और है नीरा त्रिपाठी जी का, आपने लिखा है, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क बस संगत का है। जी हाँ, ये आवश्यकता है हमारे गार्जियन की भी और हमारे खुद की भी, कि हमारा मन बहुत चंचल होता है और जो गलत संगत होती है, गलत काम होते हैं, वो ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, मनोहारी लगते हैं और हमारा मन उधर भटक जाता है। इसलिए जहाँ पर भी हमें एहसास हो कि ये जगह गलत है, ये संगत गलत है, वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। तो आप सबके संदेश आए, हमारे कुछ ये नियमित श्रोता हैं, हमारे ये बाकी जो श्रोता हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी हमारे फेसबुक पेज पर अपने सुविचार हमें भेजें, हमारे कार्यक्रम के बारे में जो आपकी धारणा है, जो सोच है, वो भी हमें भेजें। आपको और क्या लगता है कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर कार्यक्रम में और क्या शामिल किया जाए, इसके बारे में आप अपनी बात रख सकते हैं। और फिलहाल आज हमने जिस विषय पर बात की है, प्रकृति की, प्रकृति के संतुलन की और प्रकृति के सौंदर्य की, उससे मिला जुला एक गीत आपको सुनाते हैं, लीजिए सुनिए।

आइए कोशिश करें कि अपनी प्रकृति को हरा भरा सुंदर बनाए रखने में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करें। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुंदर तिवारी जी ने। नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म गुप्त के इस गाने से, जिसे आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है विजू शाह ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: लीजिए अब सुनिए अलाइसा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाज में ये गाना जिसे हमने लिया है फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से। जावेद अख्तर के बोलों को सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लाय ने।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं समीर के बोल नदीम, श्रवण के संगीत निर्देशन में आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, फिल्म का नाम जीत।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गयी है। जबकि पहले दिन जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के

0: सुषमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। और तलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण है वो है बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत से यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
4: सन 1962 में होमगार्ड के विभाग का गठन हुआ। 1962 के बाद 1970 तक के और 1970 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 1970 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
3: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती देहमाफी कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजना

0: परियोजनाओं पर कार्य जारी है। 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से एडीजी कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल में अभी आपने सुनी एटा और कौशाम्बी जिलों की खबरें।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए समय सुरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद सुरों में देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्लाह खान हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। आप सबका तहदिल से खैर मकदम करते हैं। सामिने बज़्म, आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। जो शुराए इकराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। हम सभी मेहमानों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले दावत सुखन देते हैं मोहतरम जनाब अहमद नबी साहब को कि वो आएं और इस महफिल को नूर बख्शें।

0: آپ ملاحظہ فرمائیں
1: جی
0: کہ در گزر کر

0: बहुत अच्छा है।
1: और ये भी शेर देख लें कि वो अगर चाहे तो निकल जाए,
0: वो अगर चाहे तो निकल जाएं,

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: वरना दुश्वार हैं ये
0: हम मेरे
1: मेरे, और कैसे दिल से उन्हें निकालूं मैं,
0: कैसे दिल से उन्हें निकाल।

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: कि दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब,
0: दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब।

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: आ गया अब तो दम
0: मेरे।
1: मेरे, और देख लीजिए बयाज़िश कुसुमे
0: जी।

0: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है।
1: कि ये मिला है सिला हुनर का मुझे,
0: ये मिला है हुनर का मुझे।

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह।
1: पीछे हट जाए अब कदम मेरे,
0: दरगुजर कर दिए सितम मेरे, याद जब आ गए करम मेरे। बहुत ही खूबसूरत अशार से इस महफिल को रौनक बख्श रहे थे अहमद नबी अहमद बदायूनी। आइए अब एक और शायर जो बदायूं से ही तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद जलीलुद्दीन उर्फ समर बदायूनी को बुलाते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
2: मतलब हाजिर रहता हूँ समाज फरमाने, ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे। ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे,
3: अब और क्या
2: दिखाएगी ऐ जिंदगी मुझे।

0: शेर समाप्त फरमाए हजरात देखें
1: जी,
0: और ये शेर भी समाप्त फरमाए हजरात
2: जी,
0: देखें
2: जी,
0: कि मेरी हयात क्या थी,
2: मेरी हयात क्या थी,
0: अमावस की रात थी,
2: अमावस की रात थी। क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: मेरी हयात क्या थी,
2: अमावस की
0: रात, अमावस की रात थी, कुछ जुगनुओं से मिलती रही रोशनी मुझे।
2: क्या बात है,
0: मेरी हयात क्या थी, अमावस की रात,
2: अच्छी मंजर कशी है।
0: मेरी हयात क्या थी,
2: अमावस की रात
0: थी,
2: एक
0: कुछ जुगनुओं से मिलती रही
2: रोशनी मुझे,
0: रोशनी मुझे। और एक ये शेर भी देखें हजरात के, जब तक मायने के मुकाबिल नहीं हुआ,
1: जब तक
2: मायने के नहीं हुआ,
0: मायने के
2: मुकाबिल नहीं हुआ,
0: मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे।
2: क्या बात है,
0: जब तक मैं आईने के मुकाबिल,
2: बेशक यही बात,
0: जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे। और ये शेर देखें हजरात के, बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
1: बस यूं ही
0: आ गई से मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे, बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे। और ये शेर भी देखें अहमद भाई के, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे, मैं रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। और एक शेर समाज फरमाए हजरात देखें कि मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, मेरे जुनूने शौक के
1: थकते
0: नहीं कदम,
2: मेरे जुनूने शौक से थकते
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी मुझे।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: मेरे जुनूने शौक के थकते
2: नहीं कदम,
0: दर दर फिराती फिरती है असर साहब, मेरे जुनूने शौक के
2: थकते नहीं कदम,
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी।
2: बहुत अच्छा है,
0: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी।
2: क्या बात है,
0: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है दीवानगी। मुझे बतौर खास एक शेर हाजिर,
2: जी जी बिल्कुल,
0: फरमाए कि मुझ में, असा भाई देखें कि मुझ में कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश,
2: मुझ में कोई
0: फरिश्ता ही करती रही तलाश, दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे।
2: वाह वाह,
0: मुझ में कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश,
2: जी
0: दुनिया समझ सकी,
2: क्या बात है,
0: कभी आदमी मुझे।
2: बहुत अच्छा है,
0: दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे। और मक्ता समाज फरमाने
2: जी जी बताओ
0: कि दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर,
2: दुनिया को मेरी बातों,
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
2: क्या बात है, बहुत
0: दुनिया
2: अच्छा
0: है। को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
2: बहुत अच्छा है मुकर्रर इरशाद,
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों,
2: क्या बात है,
0: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे, और ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे।
2: क्या बात है,
0: اب اور کیا دکھائے گی یہ زندگی مجھے،
2: تا عمر سبز باغ دکھاتی رہی مجھے، اب اور کیا دکھائے گی اے زندگی مجھے۔ بہت ہی اچھے اشعار سے اور بہت ہی خوبصورت لہجے میں اپنی بات سامعین تک پہنچا رہے تھے محترم سمر بدایونی صاحب۔ آئیے اب ایک اور محترم شاعر محمد اسرار خان اسرار نسیمی صاحب کے حضور چلتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس محفل کو اور رونق بخشیں۔
3: غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے۔
2: جی جی آتا ہوں۔
3: قوافی کچھ مشکل ہیں لیکن آپ مفہوم سے سمجھ جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ مطلب یوں ہے

सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा।

0: शान शफक छोड़ जाऊंगा।
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
0: गुल बूटे कहे कशाओ शफक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा मैं अपनी दास्तां के वरक
1: छोड़
0: जाऊंगा।
1: क्या बात है।
0: मैं अपनी दास्तां के वरक छोड़ जाऊंगा, दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
1: वाह वाह वाह,
0: दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
0: बोलने का सच बोलने का दुनिया में हक छोड़ जाऊंगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
0: सच बोलने का दुनिया में हक
1: छोड़
0: जाऊंगा। एक काफिया और देखें।
1: जी जी आता।
0: कि मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
0: मेरा चमन से जाना भी
1: शबनम
0: से कम नहीं, रुख पर हरेक गुल के अरक।
1: क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: रुख पर हरे को गुल के अरक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा। गजल का एक शेर।
1: जी जी आता।
0: टूटेगा उनकी आंखों से तारा कभी कभी।
1: क्या बात है।
0: टूटेगा
1: उनकी आंखों
0: उनकी आंखों से
1: तारा कभी कभी,
0: तारा कभी कभी। इतनी तो रोशनी की रमक
1: छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है।

0: पालक
1: छोड़ जाऊंगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह
0: वाह। दिल की आंखों में भी अलक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा। मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं, नहीं। रुख पर हरे को गुल के अरक छोड़।
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का खलक छोड़ जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत अशार से और बहुत ही अच्छे लहजे में अपनी बात हमारे सामीन तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद असरार खां असरार नसीमी। अब ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसमें जो शोरा इकराम शामिल थे उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी साहब, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं SK घोष। इनके स्वर में लीजिए सुनिए सूरदास जी की ये भक्ति रचना।

इस रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे एसके घोष। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।

0: पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंक रोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें लीजिए पहले सुनिए बाबूलाल दिवाकर के स्वर में ये देवी गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल दिवाकर के स्वर में लोकगीत। अब हमारी अगली कलाकार हैं वर्षा तिवारी, इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

इस गंगा गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए
2: अजीत जी। गर्मी के मौसम

0: में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है,
1: जी
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
1: जी
0: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं,
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज़्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफ़ेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत

0: भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
2: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
0: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
2: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
0: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
0: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
0: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।

0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
2: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक में खेले भरपूर।
2: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।

0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तान

0: पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज सुरों की महफिल सजेगी उस कलाकार के नाम जिसने अपनी पहली ही फिल्म से कॉलेज के लड़कों को अपना स्वैग और लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसका नाम है शाहिद कपूर।

श्रोताओं, वक्त बदला और शाहिद ने अपनी चॉकलेटी बॉय वाली इमेज को तोड़कर सबको हैरान कर दिया। कमीने का गुड्डू हो या हैदर का प्रतिशोध, शाहिद ने साबित किया कि उनकी अभिनय की गहराई समुंदर से कम नहीं है। और फिर आया कबीर सिंह का वो जुनून जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

श्रोताओं, अभिनेता पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के रूप में की। फिल्म इश्क विश्क के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उनकी प्रमुख फिल्में हैं जब वी मेट, हैदर, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह, जर्सी आदि बहुत सारी।

श्रोताओं, दो दशक का शानदार सफर और आज भी वही ऊर्जा। शाहिद कपूर का हुनर हर बीतते साल के साथ निखरता जा रहा है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में। सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने। बोल निदा फाजली के हैं और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

और आइए अब उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में सुनते हैं फिल्म विवाह का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौं जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की

0: यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: Moi Sri Himanta Biswa Sarma Ishwarar namat shapat lao je bidhir dwara sthapito Bharatar sangbidhanor proti moi prokito biswas aru anugotya pokhon korim.
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat last evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: Prime Minister Modi also reiterated his appeal to avoid buying gold until the situation returns to normal. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The Prime Minister added that the double-engine government will ensure seamless delivery of key central schemes. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the border security force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people not to buy gold. The comments triggered protests by BJP workers in the state. Police said Further investigation is underway.

0: Wait. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. President Draupadi Murmu today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. These prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today. The Sensex dropped 800 points to 75,216, while the Nifty dropped 220 points to 23,596 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर सुनिएगा भास्कर दास का बांसुरी वादन और रात में 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। बहने पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर वर्षा तिवारी के गाए लोकगीत सुनेंगी और अर्चना शुक्ला की वार्ता सुनेंगी बढ़ती किशोरियों के पोषण का कैसे रखें ध्यान। दिन में 2:30 पर पहले सुनिएगा पंचम लाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत, उसके बाद आप सुनेंगे प्रतिमा मिश्रा के गाए लोकगीत और कार्यक्रम के अंत में विष्णु राजा के गाए लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे छेदीलाल और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में अवधेश द्विवेदी से सुनिएगा उनका काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी सुमधुर भाषिणी तिवारी। हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनवा रहे हैं। प्रस्तुत है बांसुरी पर राग मधुमात सारंग। कलाकार हैं भास्कर दास। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप भास्कर दास से बांसुरी पर राग मधुमात सारंग सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश, पेश कर रही हैं मधु कुमार।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10:30 बजे से की जाती है। तो श्रोताओं, इसके लिए हमारा फोन नंबर भी लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है पहला वाला 0532-2970-462, 0532-2970-462, और दूसरा नंबर है

0: अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हडिया, तहसील हडिया, थाना हडिया, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: हंडिया से प्रेमचंद यादव जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तेरे नाम फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपको गुनगुना दे मैम, बहुत अच्छा गाते हैं।
0: अच्छा अच्छा जरूर।

0: सनम।
1: जी बहुत अच्छा गाया आपने। और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं या किसी का नाम लेना चाहते हैं?
0: जी मैम, नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बोलिए।
0: जी हमारे मित्र हैं प्रियांशु यादव, उसके बाद साहब लाल यादव, हमारा छोटा भाई अंकित यादव, हमारी तीन बहनें हैं आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, और हमारी मम्मी का नाम है चित्ररेखा देवी यादव।
1: तो आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम नितेश आर्य, हम प्रयाग से बात कर रहा हूँ। आपकी कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयाग से बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें
0: तभी आप नियमित श्रोता हमारे बन गए हैं
1: जी। आज मुझे गाना सुना है, तो नाम है कुछ न कहो गाने बोले, आजकल से जुल्फों जब खेलती तो अच्छी लगती है।
0: कुछ सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से मैं राजेन बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है दो रास्ते।
0: दो रास्ते, इसका कौन सा गाना है?
1: छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई।
0: तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई।
1: जी
0: क्या
1: जी
0: बात है, बहुत सुंदर गाना चुना है आपने।
1: जी मैम।
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवा देते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रही हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज
0: जी। जी दादनपुर प्रयागराज से विकास जी ने कॉल की है, तो विकास जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है आपसी परछाई
0: जी,
1: और गाने का बोल है अगर मुझसे
0: मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो।
1: जी,
0: भाई खूब बहुत सुंदर गाना है, लता जी की आवाज में ये गाना है।
1: जी,
0: तो चलिए भाई विकास जी, आपने इतना अच्छा गीत पसंद किया है तो हमारे सारे श्रोता भी सुनेंगे और आप भी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: आरणी मधुरी जी, सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से आरणी मधुरी जी से।
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सनम रे।
0: जी
1: को पर तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन तेरे नाम करूं। सनम रे
0: भाई, गाना तो
1: मेरा
0: आपने बहुत अच्छा
1: सनम
0: चुना है।
1: जी, बहुत
0: ऐसे
1: अच्छा गीत है।
0: सड़कों की तपिश थोड़ी कम हो जाएगी अगर भीगी सड़कें हो जाएगी। बिल्कुल सही है। चलिए इंतजार करते हैं और आपको सुनवा देते हैं सनम रे फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।
1: जी हृदय से धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज

0: 1% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points to 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया तनाज़ों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: वजीर आजम ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज़ेह रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉ शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉ शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजरा आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इसलाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाज़ तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी

कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सत्या, अरे ए सत्या, अरे हम कहा तो से राम राम बहनी।
1: राम राम जमुना बहनी, और अपन पनघट कार्यक्रम सुनाए वाली सब बहिया बहनी हरिन के राम
0: राम राम
1: राम।
0: सत्या,
1: हाँ
0: अरे देखा था वो कितना मने घाम तेज से भाबा कि
1: हम्म,
0: कपार समझाते जैसे बिल्कुल तपे लगा
1: हाँ बहनी, हाँ
0: और जाना थू कपार जौन तपा था घामे सीऊ और जौन घरे का जौन बजट होत है वो
1: हाँ
0: समझ ले ओसे तो दिमाग और खराब हो गया बटे।
1: सही
0: यहाँ समय
1: कहो।
0: शादी ब्याह लड़कियन के स्कूल हाँ कपड़ा लत्ता उनका सबके ड्रेस समझ ले कि एकदम जीवनकवान हो गया बटे।
1: बिल्कुल बहनी, देखा जाना तो जमुना बहनी, ई बात तो सही है कि घर के बजट खाली पैसे के हिसाब नहीं होते, बल्कि घर के लोगन के सेहत, शिक्षा और घर के जौन भोजन पानी के व्यवस्था भी ओमन शामिल होत है।
0: बिल्कुल सही
1: कहे के
0: कहो।
1: मतलब ये है कि बजट खाली जौन बाटे पैसे के नहीं होते, ऊ पैसे के द्वारा सुख समृद्धि और जौन भौतिक सुख सुविधा बच्चन के सुंदर भविष्य के लिए कैसे आप बचत करत हो, कैसे का करत हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऊ सब का एक तरह से विधिवत योजना बनाए के
0: बनाया
1: पड़त
0: जाता
1: है।
0: था। तो जब देखा तू एकर बजट का बचत का बात कहूँ तो सोचा था कसना आज यही विषय पे बात कही कह लेन जाए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो देखा सत्या, मनुष्य के जीवन में धन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, और परिवार की आवश्यकताओं के पूरा करे, बच्चन के शिक्षा स्वास्थ्य भविष्य की सुरक्षा और सुखी जीवन जिए के लिए
1: हाँ
0: पैसा का सही प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है ना। यदि आय सीमित बा और खर्च अनियंत्रित हाँ तो परिवार आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकत है। इसलिए घर का बजट बनाना और ओके सलीके से संभालना हर परिवार की जिम्मेदारी होता है।
1: बिल्कुल सही कहती हो जमुना बहनी, और ये बात जानत हूँ कि घर का बजट बनाना पहला कदम होत है आय और खर्च का सही हिसाब रखे के खातिर। काहे कि परिवार में जितना भी खर्च होता है ना, जैसे कि खर्च के साथ आमदनी भी रहत है, हाँ जैसे
0: हाँ।
1: कि केहू का वेतन हो गया या व्यापार से लाभ हो गया
0: मैंने कोनो के
1: या
0: धंधा
1: हाँ
0: पानी
1: धंधा पानी हो गया, या मतलब कहे कि मतलब आय का एक जो स्रोत
0: स्रोत
1: होता है
0: होता।
1: ओकर पूरा विवरण हो के चाहिए। काहे से एकरे साथे साथे रोजमर्रा के जो खर्च होता है, राशन, बिजली, पानी, बच्चन के फीस, खाना, सब्जी, दवाई, कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जेके इंसान कभी लिखबे नहीं करते, मुना इस सब के लेवे के चाहिए।
0: लिख लेवे के
1: हाँ
0: चाहिए।
1: लिख लेवे के चाहिए, काहे से कि जब हमें एकर जानकारी रहे तो आपकी यहो पता रहे कि आपका पैसे का जो खर्च है वो सही जगह कहाँ होता और अनावश्यक खर्च कहाँ
0: कहाँ
1: होता।
0: होता। बिल्कुल सही कहो सत्या। और देखा सत्या, बजट संभाले के लिए आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में अंतर समझना बहुत जरूरी होता है।
1: हाँ
0: काहे से कि देखा कई बार लोग दिखावे में, फैशन में या शौक में जरूरत से ज्यादा जो पैसा खर्च कर
1: खर्चा
0: देते
1: कर।
0: हैं, जैसे महंगी वस्तुएं खरीदना, बाहर जाना, बिना जरूरत के ऑनलाइन सामान खरीदना, हाँ ये सब परेशानी का कारण बन सकत है। इसलिए हमेशा जरूरत के अनुसार खर्च करे के चाहे और बचत के पहली प्राथमिकता भी देवे के चाहे।
1: बिल्कुल सही कहती हो, बचत घर के समझ लब बजट का महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप बचत कर रही हैं तबे बजट आपका अच्छे से बन सकत
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: हाँ
1: हर महीने आय का एक हिस्सा बचावे के रखे के चाहिए,
0: जी
1: काहे कि छोटी छोटी बचत भविष्य

0: में बड़ी ही सहायक बन जाती हूँ।
1: बिल्कुल
0: सही अचानक जैसे केहू के बीमारी भय या को भगवान न करे कोनो दुर्घटना भय या कोनो आपातकालीन स्थिति भय तो एहमन तुहारी जो छोटा सा गुल्लक बैंक घर में रहत ना बचत वाला यही संकट के समय काम आवत है। और पहले बचत करके फिर खर्च आदत अपनावे के चाहिए। कहे कि बचत बैंक डाकघर बीमा घर या अन्य सुरक्षित योजनाओं में भी निवेश करना बहुत ही लाभप्रद
1: बहुत जरूरी होता है। तू बहुत पते के बात बताओ और जानो तो सत्या बचत करे माँ घर के हर परिवार के सदस्य का भागीदारी होए के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: इनाई की जॉन बटे सब कमाता है और अपन अपन धराता है एक मन ही पैसा खर्चा करता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बहनी देखे,
1: तो यदि परिवार के हर सदस्य समझदारी से खर्च करी है ना और एक दूसरे का सहयोग करी है तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहता है हा? और बच्चन में देखा सत्या अपन चाहे हमारे सबको बच्चा हो चाहे केहू का बच्चा हो बचपन में ही पैसन के महत्व के उनके सबके समझाना चाहे ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सके।
0: बिल्कुल सही कहती हो कि कहे कि नागरिक बने के जरूरी है कि आज के समय में बढ़ती हुई महंगाई के कारण बजट प्रबंधन भी आवश्यक हो गया।
1: बिल्कुल
0: कहे से कि घर का बजट संभालना एक कला के रूप में देखा
1: जी,
0: जाता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: कहा जाता है ना कि देखे हो वो घरे में बहनी हरे रहतीन भले ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहतीन लेकिन अगर दूर का सोच रखतीन दूरंदेशी होतीन तो बड़े सूझबूझ के साथ घर गृहस्थी के चलावतीन अनुशासन भी वही तरीके रखतीन और समझदारी भी रखतीन और संयम से सीखे जा सकत है कि सही बजट के केवल वर्तमान के ही नहीं सुरक्षित करत ये आपके भविष्य के भी बचाए के रखत है और उज्ज्वल करत है। यदि हम अपनी आपके एक अनुसार खर्च करे लगब तो समझ ल कि जीवन में अधिक सुखी और शांत और जानत हूँ आवे वाली कोनो भी समस्या रही ओके लिए आप निश्चिंत रहू और अगर निश्चिंत रहू तो चिंता न रही और अगर जहाँ चिंता न रही वहाँ आपका मन मस्तिष्क एकदम सही तरीके से
1: काम करे
0: बिल्कुल और हर समय का हर मौके का आनंद भी उठाए।
1: बिल्कुल तो देखा बातचीत तो बड़ी कई लेत गए नीक बनीरन से और बातचीत तो होते रही लेकिन हम सोचा थे कि अब यही बात पे एक ठीक हम नीक के जौन बा वर्षा तिवारी बहनी से झूमर सुन लिया जाए
0: तो चलो तुहु सुना हमार बहनी हरे सुने।

0: सत्या देखा वर्षा तिवारी बहनी कितना नेक गाने गाए। हाँ तो देखा सत्या हम कहते रहे बातचीत तो होते रहे। तो सत्या देखा हर माता पिता अपने लड़किया का दे ला के अच्छा अच्छा भोजन पौष्टिक आहार अपने क्षमता के अनुसार देवे
1: चाहते हैं। बिल्कुल सही कहती हूँ
0: बोला। फिर भी जो अपने घर में बैठी बहनी हरे हैं और जब वो किशोरा अवस्था में पहुंचत हैं जब बच्ची हमारे हैं तो उनके अलग से थोड़ा विशेष ध्यान देवे की जरूरत पड़े।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। हाँ। उनका उतनी समय का है कि देखा उनके शरीर में जब बदलाव होता है ना
0: हाँ।
1: तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, संकोच का भी भावना हो जाता है। इन सब कारण बच्चन के जो है मानसिक स्थिति मतलब वो अंदरूनी बड़े जूझत रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे सबसे जरूरी पड़ा था कि उनके शरीर पर कुछ अच्छा असर पड़े अच्छे के लिए माता पिता के उतनी समय उन्हें विशेष तौर पर ध्यान देवे के चाहिए। मानसिक रूप से भी अच्छे से सहयोग करे के चाहिए और शारीरिक रूप से भी उन्हें जो मटे शरीर के हिष्ट पुष्ट रखे के लिए खान पान का विशेष तौर पे ध्यान देवे के चाहिए।
0: तो देखा बातचीत यही से संबंधित एक बातचीत है अपने कार्यक्रम में कि बढ़ती किशोरियों के पोषण का कैसे रखे ध्यान और अर्चना शुक्ला से जयश्री गुप्ता जी की बातचीत हो तो चला सुना जाए।
1: बिल्कुल।
2: राम राम श्रोता बहनी हरे। स्वस्थ शरीर और उज्जवल भविष्य की नींव सही पोषण से ही रखी जाती, विशेषकर किशोरावस्था व समय होता जब हमारे किशोरियों के शरीर मन और व्यक्तित्व का तेजी से विकास होता। ऐसे में यदि उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार मिले तो वे न केवल स्वस्थ रहिए बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों का भी पूरा कर सकी हैं। आज अपने पनघटे पे हम एक बातचीत लेके आए हैं बढ़ती किशोरियों के पोषण का कैसे रखे ध्यान। तो बातचीत के लाने हमारे पनघटे पे आई हैं अर्चना शुक्ला बहनी। अर्चना बहनी आपके बहुत बहुत स्वागत। अर्चना बहनी देखा जैसे कि हम सभी लोग जाने थे कि बढ़ती किशोरियन के लिए एक माँ की चिंता सदैव जो उन्हें ऐसी होती कि देखा हमार बेटी बढ़ रही है और उनके लिए कौन सा ऐसा पोषण वाला खाना दे दे या कहा दे जो हमारी है वो स्वस्थ रहे। पर जब वो किशोरावस्था में जाए लगती तो चिंता और ज्यादा थोड़ी बढ़ जाती। तो बढ़ती किशोरियों के सही पोषण का कैसे हम सब ध्यान रखी। और देखा जब हम बात करी थी तो कसना आज यही कहा पर प्रश्न भी बना लिया जाए।
3: राम राम बहनी। देखा बहुत अच्छा विषय आप ले रहे हैं कि बढ़ती किशोरियों के पोषण का कैसे रखे ध्यान। आज बहुत समस्या होता आज के युग में कि जोन जोन तरह का माहौल आते एक तरफ से फास्ट फूड दुनिया भर का चलत बा, दूसरी तरफ जो है जब 13 से 18 साल का जो टीन एज का लड़कियन हमार बिटियन होते हैं तो उनके तमाम तरह का हार्मोनल बदलाव होता शरीर में। अच्छा वही में कहीं चिड़चिड़ापन गुस्सा क्रोध डिप्रेशन ऐसे तनाव तरह तरह का तो और साथ ही साथ उनके पढ़ाई पे बोझ हो रहा था उनके ऊपर स्कूल जाते हैं और इसी में जो है उनके बहुत जरूरी है उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और ओ में सबसे बड़ी भूमिका देखा होता कि घर में महतारी हैं बाप हैं पिताजी उनके हैं बाबा हैं दादी हैं भैया बहनी सब जने के जरूरी है कि सब जने मिलके बिटियन के जो भी टीन एज के बिटवन हैं चाहे बिटियन हैं लेकिन बिटियन के ज्यादा जरूरी होता है काहे के

0: उन्हें जो है सृष्टि के एक तरीके से निर्माण कर रहे थे आगे चल के, और जब उनके मासिक धर्म का शुरुआत होता वही समय, तो उस समय उनके खून की कमी, एनीमिया, तमाम तरह का जो है दिक्कत होने लगा था। तो यह समय में पोषण के लिए जो मुख्य सुझाव होता है कि जैसे सीजनल होता है कि जो जोन मौसम चलत बा, जैसे अब इन गर्मी चलत बा, अब आवेला बरसातो आए, ठीक है जाड़क मौसम है, तो हर मौसम में हरी सब्जी, तमाम तरह के फल और तमाम तरह की चीजें आवत हैं। हम कोशिश
1: हाँ मौसम में चलत है कि वही सब्जी वही तरह के जो है फल भी उनका खाए के लिए देकर चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अगर बात करें कि उन्हें का दे खाए के बदे, तो आहार में कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़ है, दाल है, खट्टे फल है, क्या कि खट्टे फल में विटामिन सी होता है और फल होते हैं विटामिन ए भी, तमाम तरह का प्रोटीन होता है दाल वगैरह में, बीन्स में होता है, हड्डियों में मजबूत करे बदे एक बिटिया के 1300 मिलीग्राम कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। उनमें साथ ही साथ उनके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, अंकुरित अनाज वगैरह का ध्यान रखें, ताजे फल, ताजे सब्जी, ताजे खाना खाएं, बासी ओसी का इंतजाम, बासी कम खाएं, कोशिश ही करें, और पेय पदार्थ, अब गर्मी चलते बा तो गर्मी में कोशिश करें कि पेय पदार्थ ज्यादा लें। अब पेय पदार्थ में तमाम तरह का फल आवत बा, आम है, केला आटे, संतरा बा, मौसमी बा, नींबू बा, सिकंजी बनाए लें घरे में, बेल आवत बा, पेट बदे पेटे के रोग बदे बहुत अच्छा होता है। तो प्रोटीन बदे देखे बहनी की उनके दाल, बीन्स, सोयाबीन, अगर मांसाहारी हैं तो अंडा, दूध वगैरह, अंडा वगैरह शामिल कर लें, नहीं तो शाकाहारी, जैसे हम तो शाकाहारी है तो बहुत जने शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी बहुत सारा अनाज आवत है, बहुत सारा जो है सब्जी है, फल है और पेय पदार्थ है, और कोशिश करे कि उनका समय संयमित रहे कि भाई सवेरे जो है समय पे कर ले, दिन में जो है खाना होना ठीक से खाएं, डेढ़ लीटर से 2 लीटर तक पानी जरूर पिए, ताकि क्यों तरह का डिहाइड्रेशन उनके, पानी कमी ना होए, और उनके लिए संतुलित भोजन, संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता। एक चीज और है बहनी कि देखा फास्ट फूड आजकल जो है बहुत सब तरह तरह का दुकान खुली बा, चाउमिन फाउमिन सब जने खाते हैं, कोशिश करे कि हम घरे में बनाए ले, अगर कभी हमारा मन करे तो हम कोशिश करें कि हम उनके घरे में बनाए ले, साफ सुथरा बने और सब जने के साथ मिलके खाए ले, और कोशिश यह करे कि कम खाइए के, ताकि हम जब हम अपने जो प्राकृतिक भोजन होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद उलाद चटनी बहुत तरह का भोजन होता है, जब हम ओके पौष्टिक और टेस्ट दे, ये हमें ध्यान रखे कि चाहिए कि केक का टेस्ट कैसे ना आटे।
1: अच्छा, मेरी एक बात और भी है कि यदि खरे में स्वाद मिल जाए, यदि जब थाली हमारे लगे तो ये स्वाद मिल जाए तो काहे लिए बाहर जाए कि कुछ खाए का पड़े। और देखा अशमी ने एक बात और कि हमारे जो किशोरियन है, बढ़ती बिटियन है, तो देखा उनका जो ने खासकर जैसे कि अभी नाम बताए कि पारिवारिक माहौल के भी जो ने काफी असर पड़ा था उनके जो ने व्यवहार पर, तो देखा जब परिवार में उनका प्रेम मिली और सहानुभूति मिली और उनके साथ साथ उनका प्रोत्साहन भी मिली, तो देखा काहे ना वो आगे चल के अपन नाम रोशन करें। तो आशा बहनी जैसे कि अभी हम लोग बात करत रहे कि उनके पोषण का ध्यान, पर अब देखा जैसे कि हम लोग देखी थी कि 13 से 18 वर्ष जो हमारे किशोरियन होते हैं उनके मासिक धर्म का मतलब समय होता है, और देखा इस समय जैसे आप बताएं कि हार्मोनल असंतुलन भी होता है, तो एक ही का समाधान है?
0: देखो बहनी, 10 से लेके 19 साल तक, हमारे समय में तो 13 14 15 साल में जो है मासिक धर्म शुरू होता है, आजकल जो है वो 10 साल में शुरू हो जाता है, तो 10 से लेके 19 साल तक जो इनका बाल्यकाल किशोरावस्था का समय रहा था, और ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण संक्रमण काल है जिनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब तरह का बदलाव होता है शरीर में। इस समय में स्तन का विकास होता है, महावारी शुरू हो जाता है, त्वचा में बदलाव आवत है, तेजी से शारीरिक वृद्धि होता है। किशोरियों का विशेष रूप से में पोषण, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और इस समय में हार्मोनल बदलाव होता है, तो जैसे के कारण जो है जिज्ञासा होता है उनके अंदर की काहे बदलाव होता, तो ये समय मातारी की जिम्मेदारी होता है कि माँ की जिम्मेदारी है कि उन्हें बिटियन के ठीक से समझावे कि कैसे स्वच्छता का ध्यान रखें, ये बदलाव किथा भी ना होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज की ज्यादा छुपावत ही ना तो बिटियन जो है का है ये और बतियावत है।

0: हाँ, और तनाव और भ्रम उनके अंदर ना रहे कि तरह का, जब हम ना बताओ उनके सही चीज ही ना, तो कहा होता है उनके अंदर तनाव होता है कि काहे होता है, और भ्रम की स्थिति होता है जब इधर उधर पड़ी है और सही चीज जानकारी ना हुए, अब भ्रम का अनुभव हुए तो वो दिक्कत करे। तो हमारी जिम्मेदारी होता है कि हम एक माँ के नाते हम उनके सही चीज बताई, और एनीमिया किसी तरह का खतरा उनके लिए आगे चल के भविष्य में काहे के भाई वो नो महतारी बनी है आगे चल के, इस सबकी जिम्मेदारी भी हमारे सबका होता। मोबाइल आजकल सबके जने के हाथ में बा, तो यह जो है एक बहुत बड़ा कारण होता कि कुछ वो सभी देखते हैं जिज्ञासा के मारे।
1: जब ये बदलाव होए लगत है, जो उन्हें हार्मोनल असंतुलन होए लगत है, तो देखा जैसे जो लड़कियां होती हैं बढ़ती उम्र की, वो अक्सर ऐसा होती है कि कुनियाए जाती, मतलब अपने आप का जैसे अकेलापन में वो अपने आप का समेट लेती, ऐसा काहे होता है?
0: यही बतिया तो हम बतावत है कि देखे जब हार्मोनल चेंज होता है, बदलाव होता है उनके अंदर, तो भावनात्मक मानसिक शारीरिक मतलब हर तरह का होता है। और जब महतारी की जिम्मेदारी हो कि अगर सही चीज ना बताइए, समय पे ना बताइए, उनके ठीक से ना समझाइए, तो का कोना उठा ले लेती और कहीं के हाँ दोस्त यार दोस्त वाला हाँ, एक महतारी की जिम्मेदारी है, दादी की जिम्मेदारी है, बड़ी बहन करें भौजाई है इनके, तो महतारी महिला अगर है तो उनका जिम्मेदारी होता है कि बिटिया की ठीक से समझावे, उनका सही चीज के जानकारी दें, ताकि उनका हड्डी मजबूत रहे, सही वजन रहे, एनीमिया बीमारी वगैरह उनके ना होए, उनका आयरन युक्त आहार उनके ज्यादा जो है उन्हें ध्यान रखें।
1: आशा बहन आप बता रहे थे कि एनीमिया ना होए, तो एनीमिया से कैसे निपटा जाए?
0: एनीमिया से सही तरीका आता है कि देखा कई चीज है कि एक तो उनका खान पान सही रहे, समय पे रहे, और साथ में योगा बहुत जरूरी आटे है। कहे का देखा जब बढ़ती एज का लड़कियन किशोरियन होती तो उनके शरीर के अंदर लचीलापन बना रहे, तनाव कम रहे, हार्मोनल बदलाव अगर संतुलित और आत्मविश्वास, कहे का पढ़ाई पे भी ध्यान दे एक बार ना, तो ये बते जरूरी है कि सूर्य नमस्कार करवावे, ताकि उनका मन जो है वो कुनौठा ले बदे ना लगे, वो दिमाग अपने शरीर बदे लगे रहे कि हम स्वस्थ रहे, हमारे लिए ज्यादा जरूरी बा। तो सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन, बालासन, ये सब आसन है कि उनके रीढ़ की हड्डी के मजबूत करते हैं। साथ में जो है प्राणायाम वगैरह करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, प्रणव करें, अनुलोम विलोम करें।
1: एनीमिया के बारे में तो कैसे, एनीमिया से कैसे निपटा जाए?
0: देखे आज विश्व में अगर कहें तो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे ज्यादा बीमारी जो संख्या में आए एनीमिया आटे। कहे कि हम अपने जब बढ़ती उम्र के लड़के या बिटियन होते हैं, तो हम ज्यादातर बिटियन का ज्यादा ध्यान रखे, चाहे कहे के जो है उनका मासिक धर्म होता है, खून की कमी हो जाता है, और सही खान पान में अगर न रहे तो एनीमिया की शिकायत हो जाता है। और एक जो हमारे ब्लड होता है वो 13-14% रहे चाहे, ठीक है, लेकिन हम अगर जब नाप कराओ तो हमरो हो सकता कम नहीं करावे, काहे के कहीं ना कहीं हम जोन अपन ध्यान नहीं रखे। ये मेरे जरूरी है कि हम अपने आहार में आयरन युक्त जो है जो हमें भोजन को बढ़ाएं, ये में जरूरी है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों का उचित संतुलन हो चाहे, जिनमें पालक है, गुड़ है, मेवे हैं, दाल है, मांस है, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ को हम अपने पौष्टिक आहार में जोड़ें। साथ ही हम जो है जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल न करें, या कम से कम करें, या करें को है तो घर में बनाए लें, साफ सुथरा बनाए लें, और शारीरिक गतिविधि सक्रिय रखें, और नियमित व्यायाम वगैरह करत रहें।
1: अब इन तो एनीमिया से आप बताएं कि कैसे निपटा जाए, पर अब हमारा अगला प्रश्न है कि योग कितना महत्वपूर्ण है का जो ना संतुलन में रखे के लिए।
0: देखा भाई ना, मैं आखिरी लाइन जो हम आपके बताए कि भविष्य की ये पीढ़ी होते हैं, और इनके बदे जो है शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी होता है। शारीरिक व्यायाम में अगर आप देखें तो खेल कूद और योगा, प्राणायाम, तमाम तरह का जिम्नास्टिक वगैरह, अगर बहुत लोग सब अलग अलग तरह का खेल कूद करते हैं, सबसे जरूरी आटे की हम कुछ ना ही तो से कम प्राणायाम जो हमारे जो है अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीद है, प्रणव है, ये सब जो है अपन करें, थोड़ा मोड़ा अपन ओम का उच्चारण अगर हम गहरी सांस लेके करें, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य बना था, ठीक है, और खेल कूद वगैरह में भी हमारे इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए हम अपना हार्मोनल संतुलन जो है ओके हम संतुलित कर सके थी, साथ में जो है अपना मानसिक शांति, चिंता, तनाव सब दूर।

0: बिल्कुल सही। लेकिन एक के बाद हमारा एक प्रश्न और है कि देखा माँ के रूप में एक किशोरी के पोषण का भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान रखना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। ये भी तो एक उनके लिए चुनौती है, एक ही ध्यान कैसे रखा जाए।
1: बहुत बढ़िया बात भाई, कहीं मैं नहीं देखा। एक महतारी की जिम्मेदारी तो पूरे परिवार के संभाले के रहते हैं। अब वो सास ससुर के देखें कि पति के देखें कि बिटियन के देखें और खुद के देखें को भी जरूरी बा, तो ये चुनौती तो बाटे। और यही चुनौती जीवन में हर समय हमरे कुछ न कुछ लगी रहता है और इमें हमार ड्यूटी बढ़ जाते हैं। एक कविता कही कि बच्चों आज हम बताते हैं तुम्हें एक राज महान, पौष्टिक भोजन से निखरते हैं हमारे प्राण, बड़े बुजुर्गों का कहना लो मान, स्वस्थ शरीर का राज है पौष्टिक खान और पान, दाल रोटी सब्जी से पोषित है हमारी जान, ना रहो तुम इस बात से अनजान। तो हमें इस चीज का, हमें सबके सबका महत्व समझे के पड़े और एक महतारी के जिम्मेदारी के कारण हमें पूरे परिवार के सब सब संजोए के लेके चले पड़े कि दादी बाबा सब जनों में सहयोग करें, हमारे जो पिता हैं उन्हों सहयोग करें, भाई भी सहयोग करें और एक जिम्मेदारी अगर सब जने मिल के उठाइए तो शायद जो है वो बांट के ज्यादा अच्छा से हम बिटियन के देखभाल कर लिए भाई।
0: आशा बहनी आप हमारे पनघटे पे आई, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सत्या, देखा अर्चना शुक्ला से जयश्री बहनी की बातचीत रही, बड़ा अच्छा बताई ने सभी। तो अब यही बात पे हम सोचे थे तोहके और मैं बहनी हरन के एक खे गीत सुनवावत है, दूल्हा गंगा पार का। तो चला तुहु सुना और बहनी हरन सुने और सुनावत है उषा मंगेशकर जी।
3: तो चला सुना जाए।

0: सत्या गौनाई कैसा लगी?
1: अरे बहनी, गौनाई तो इतनी अच्छी रही कि हम एकदम चुपचाप होके बड़े शांति मन से सुनत रहे, अच्छा लगत रहा।
0: हम देखते रहे कि तू बड़ा आंख ऐसे घुमाए घुमाए सुनत रहो।
1: अच्छा ये बतावा,
0: हाँ।
1: गीत गौनाई भी हो गया, सब कुछ हो गया, मुने देख हम तो से कही कि जब भी हमसे तू पनघटे पर मिला कर,
0: हाँ।
1: तो कुछ अपने हाथ के जरूर बनाए के ले आवा कर। ये बतावा, आज अपने रसोई घर से का जादू चलाए के ले आए हो?
0: जादू चलाए के तो हल्ला देखा, ये बोतल पकड़ा। ये मैं पूछा कहा हुए?
1: अरे बतावा बहनी,
0: आज ले आए हैं बेल का शरबत।
1: अरे वाह, देख घामे घामे आवत रहू तो तोहा तकलीफ पता रहा है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, कि हमरे सखी के कोनो परेशानी ना हो।
1: बिल्कुल,
0: हमारी हम बेल का शरबत जौन बल्लेत आई है।
1: हाँ? चला तू ऐसा कर,
0: हाँ?
1: हमका शरबत दे दे।
0: हाँ?
1: हम पियत रही।
0: हाँ?
1: मुने ये बतावा कैसे बनाए हो, उतनी हमरे बहनी भरिन के बतावत रहे।
0: बिल्कुल, तल्ला तू शरबत जौन बा पकड़ा बोतल और पियत रहा और अपने बहन हरन के बतावत है। तो देखा और सुनता रहो कान खोल के।
1: हाँ हाँ।
0: तो देखा बेल का शरबत सत्या गर्मी में ठंडक दे वाला और पाचन के लिए अच्छा माना जाता है।
1: हाँ हाँ।
0: जेके आसानी से घर में बनावा जा सकता है।
1: आई मौसम में आसानी से मिल भी जाता है।
0: मिल भी जाता है। अब देखे मैं सामग्री का कहा, जैसे एक पका हुआ तू बेल ले ले, चार पांच कप ठंडा पानी और चार पांच मणि बड़ा चम्मच चीनी ले ले, ताकि वो मीठा रहे। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और बर्फ का टुकड़ा और थोड़ा सा पुदीना का पत्ती। अब एक विधि का हुआ है सत्या, सबसे पहले बेल के मैंने कोनो वजन चीज से
1: फोड़ ले,
0: तोड़ ले और हल्का टूट जाए तो बीच से होके खोली ले। एक बाद चम्मच से होकर गूदा कुल निकाल ले।
1: हाँ।
0: और गूदे के एक बड़े बर्तन में डाल के वह जौन बताए रहे ना कि चार पांच कप पानी मिला ले और ओके 10-15 मिनट तक हाथ से खूब मसल, ताकि वो सारा रस होकर निकल जाए।
1: अच्छा,
0: अब कावा कि अब मिश्रण के छन्नी से छान ले, काहे को में बिया हुआ होता ना,
1: गुच्छी रहत होकर
0: गुच्छी रहा था, बिया रहा था, अगर ना करबू तो फिर फंसे।
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ,
0: में तकलीफ हाँ, दे। तो अब वो मिश्रण के छन्नी से छान ले, ताकि बीज और ओकर रेसा जौन बा अलग हो जाए,
1: छान ले।
0: हाँ, अब हेमा जौन बा चीनी मिलाए के खूब अच्छी तरह से ओके
1: घोल ले।
0: हाँ, 5-6 मिनट तक खूब घोल ले, फिर ऊपर से काला नमक और जौन जीरा भुना हुआ बा ओके डाल दे। हाँ, एकरे बाद जौन बा गिलास में बर्फ डाल के ठंडा ठंडा परोसा। हाँ, चाहे ऊपर से अगर तोहे ज्यादा उठा हो तो तू पुदीना भी डाल दे, और अगर नींबू का 2-4 बूंद डाल देबू ना सत्या, तो स्वाद और ताजगी और बढ़ जात है।
1: बिल्कुल बहनी, देखा तू बतावत रहू और जौन विधा तू बतावत रहू, हम तो पी के स्वाद लेते रहे।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन हमरे जौन भैया बहनी अरे सुने हुई है।
0: हाँ।
1: तो तोहरे बतावे के अंदाज से ही वो स्वाद थोड़ा थोड़ा उन्हें महसूस होए लगा।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: है
0: ना?
1: तो यही बात
0: पे हम जौन बेल का शरबत पिया दिया।
1: अब हम तोहके बिल्कुल, अब हम तोहके यही बात पे एक किनी और जौन बटे दूल्हा गंगा पार का गीत सुनावा थे, है ना? और जो है बढ़िया सा चंद्रा रानी मुखर्जी की आवाज।
0: हाँ, चंद्रा रानी मुखर्जी की आवाज।

0: देखा जमुना बहनी,
1: हाँ बहनी,
0: गौ नहीं सुनू,
1: हाँ
0: शादी ब्याह के जो रीत रसम होथिन,
1: हाँ
0: देखा एक सुन के हर एक रसम के बाद कौन रसम होता वो सब याद आवे लगा।
1: बिल्कुल। और देखा जब ये गीत बजत रहा तो हमके आपन समय याद आवे लगा
0: तब तो पुराने ख्यालों में चली गई
1: पुराने
0: बहनी,
1: ख्यालों में चली
0: है
1: गए।
0: ना। देखा
1: हाँ
0: सही कहती हो, गीत गौ नहीं जो है ये शादी ब्याह के रीत रस्म वाले जो अब देखा बन चुके हैं, गीत गौ नहीं सुना तो वाकई में बड़ा उलगा था। और देखा पुरानी परंपराएं अपन जो हैं अब गीत गौ नहीं से ही जीवंत हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: कहे कि देखा आवे वाले समय में लोग समय के अभाव के कारण या फिर कोनो और परिस्थितियों के दबाव में देखा बहुत जल्दबाजी में हर चीज जौन काम

0: हम आपका 2 दिन का बाद, 3 दिन का बाद, का एक के दिन में सब समेटा
1: हाँ
0: चाहती है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ऐसे देखा, जब इतना अगर कम समय में ज्यादा काम समेटे के बात है, तो कहीं ना कहीं वो रीति रिवाज के थोड़ा थोड़ा कम कम
1: कम
0: कम कम।
1: भाई, जब आदमी थोड़ा
0: हाँ
1: थोड़ा होके काटे जाता तभी तो
0: हाँ
1: जान जाए के थोड़ा सा।
0: और फिर जो हमारे छोटे छोटे मतलब आवे वाले पीढ़ी के बच्चे हैं, जैसे देखा थे वही चीज सीख रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: देखा ये जौन बटे हम लोग अपने पनघटे पर आई थे, और समय शादी ब्याह का जैसे समय चलत रहा, गीत
1: हाँ
0: गौ नहीं
1: हाँ
0: हर तरह के बात करी था, है ना, हर तरह की बात करी थे। तो ये मन में ये विचार भी रखा जाता है कि हम लोग जो बात करी थे बहनी हरिन से अच्छा और ओके और कौन तरीके से बेहतर बनावा जा सकता है। तो ये सब जानकारी के लिए आज अपने पनघटे पर काहे ना बहनी हरिन के एक खनी नए संदेश सुनवाए दिन जाए।
1: हाँ चलो बहनी, पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़ चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमार ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@therateofgmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME @gmail.com। pangatprogram@therateofgmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
1: सत्या
0: तो देखा संदेश भी सुन लीन गो, और
1: हाँ
0: हमार बहनी अरे अच्छे से समझ गई हुई हैं,
1: हाँ हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: कि जोन बटे कैसे अपन संदेश अपन विचार हम लोगन तक
1: पहुंचा।
0: पहुंचाए गए हैं ना। और कहे कि हर घर में हर बहनी अरे अब बड़ा वाला फोन चलावे लगी हैं, तो उनके पास ई माध्यम तो है ये बाटे, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: अपन विचार हम लोग इनके प्रति का है कि कौन तरह के प्रोग्राम में कार्यक्रम में का सुना चाहथिन, क्या जानना चाहथिन, या का वो मन परिवर्तन कुछ
1: करे
0: उन्हें अगर
1: चाहवे।
0: लगा चाहते, तो अपन विचार हम लोगन तक जरूर पहुँचावें।
1: और जब
0: और एक बात
1: उनका दिख
0: कही,
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: बोला
0: हाँ बोले
1: कहा था ही ना कि जौन बा जब चिट्ठी पाती आवत है ना, तो हम सब बहुत खुश हो जाए थे।
0: हाँ, मनोबल बढ़त है।
1: हाँ
0: और देखा एकरे साथे जमुना बहनी, हम तो यही कहब तहु से और घरे जाए के सबसे कहूँ कि घरे गृहस्थी के जौन काम होए बहनी,
1: हाँ
0: सबेरिन संझा निकल के करें,
1: दोपहरे
0: तब
1: ना
0: ती
1: आए
0: दोपहरिया में कोशिश करें कि जौन बटे
1: ना निकले
0: घामे में
1: पड़े।
0: न निकले। अगर निकलो हैं तो कहीं पेड़े छाए दुकाने में बैठ के उस समय बिता दें, न कि धूप में बितावे। काहे से कि देखा हम लोगन मौसम का तो नियम ही है कि आवत जात रहत है ना। तो एके लिए जरूरी है कि सावधानी
1: सावधानी बरत।
0: बरते, और यही बात के साथ अब विराम देवे अपने बात के। तो बहनी हरन से विदा लीन जाए।
1: राम राम
0: राम
1: बत
0: राम बहनी हरन।

अभी बहने पनघट कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की।

0: शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 35

0: 40 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने

0: हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जाँच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर

0: बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए पंचमलाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत, पहले सुनिए देवी गीत।

0: ali.
1: और अब बेरवरिया सुनिए, कलाकार हैं पंचम लाल यादव और साथी।

विष्णु राजा की गाय इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं छेदी लाल और साथी। पहले उनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: धरती के गीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं छेदी लाल और साथियों से लोकगीत। अभी आपने सुना देवी गीत और अब आइए सुनते हैं खेमटा।
1: तो होता के

छेदीलाल और साथियों से अभी आपने सुना खेमटा, और अब आइए अंत में सुनते हैं छेदीलाल और साथियों से लाचारी। कार्यक्रम है धरती के गीत।

छेरीलाल और साथियों के गाए इस लाचारी के साथ ही कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूथ प्रोग्राम युववाणी में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या,
1: और मैं हूं आपकी दोस्त उन्नति।
0: लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। उन्नति, देख रहे हैं दिन में दिन गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल
0: ना,
1: सही कहा।
0: माहौल कितना गर्म हो रहा है, तापमान तेजी से अपने पारे को ऊपर लेते जा रहा है। और इस सब के बीच हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जितने जीव जंतु हैं, वो सब कितना गर्मी से बेहाल हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ बेहाल पेड़ भी हो रहे हैं।
1: सही बात,
0: क्योंकि उन्हें अच्छी मात्रा में पानी भी नहीं मिल रहा है, और इतनी चटक गर्मी में हो सकता है कि उनको नुकसान भी पहुंच रहा हो।
1: बिल्कुल सही कहा। और दिव्या, इसका ना असर जो है हम पर भी दिख ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पेड़ों को और सिर्फ उन जीव जंतुओं को, सिर्फ जानवरों को फर्क पड़ रहा है। हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसी मतलब जो इग्नोरेंस वाली जो हमारी हैबिट है कि हम आसपास देखते हुए जो एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाए, तो उसमें हम

0: कई सारी चीज़ों को, कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स को जो है हम इग्नोर कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी और भी बढ़ती जा रही है। तुमने अभी देखा ही होगा हाल फिलहाल में 50 से भी ज्यादा डिग्री चला गया था
1: बिल्कुल
0: तापमान।
1: तो तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूँ कि उन्नति, तो वो यही है कि हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ये ग्लोबल वार्मिंग जो इतनी आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ही ह्यूमन है, और उसके द्वारा की गई जो गलतियां हैं नेचर के प्रति वो है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है

0: करते हैं, तो ऑब्वियसली गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है. हम देखते हैं ना कि जैसे जो कैंट एरियाज होते हैं या
1: हाँ
0: जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, वहाँ कितना अच्छा मौसम रहता है गर्मी के सीजन में भी,
1: बिल्कुल
0: है ना.
1: हाँ।
0: तो
1: और देखो, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हमें नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने भी जो पेड़ पौधे हैं, हम उनको भी बचाएं। अब जब हम नए पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको बढ़ने में भी टाइम लगेगा, उनको बड़े होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वो बड़े हो रहे, तब तक क्या, तब तक हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि नए पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हम पुराने पेड़ पौधों पर भी ध्यान दें।
0: बिल्कुल.
1: और जैसे हम जब पेड़ों की कटाई करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की, तो डिफॉरेस्टेशन से सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज होता है, उससे जो जीव जंतुओं का जो घर होता है वो भी डिस्ट्रॉय होता है, वो भी
0: बिल्कुल.
1: खत्म होता है, तो वो भी बेघर हो जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने घर के साथ साथ उनके घरों का भी ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल उन्नति. और जो तुमने बात कही ना कि पुराने पेड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, इससे सबसे बड़ी बात इसलिए भी इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यही पेड़ देते हैं. हम लोग जानते हैं जिन्हें हम अर्थ का लंग्स कहते हैं, अमेजॉन जंगल,
1: हाँ
0: वहाँ पे कितने पुराने पुराने पेड़ लगे हैं और सबसे भारी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उसी एरिया से होता है. तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं जो पुराने पेड़ होते हैं, जो पुराने पुराने नए पेड़ जो जितने भी पेड़ होते हैं, ये एक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं. और इसी बात पर अब हम चर्चा करने के लिए आ रहे हैं अपनी आज की चर्चा पर, वो है इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ. हर साल 12 मई को मनाया जाता है. इस दिन का मेन पर्पस लोगों को प्लांट की इम्पॉर्टेंस और उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर करना होता है. पौधे सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ग्रीनरी बनी रहे या डेकोरेशन अच्छा लगे, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा अच्छी एनवायरनमेंट है, अच्छा हमारा जो माहौल है वो बना रहे, इसलिए भी ज़रूरी है.
1: बिल्कुल। और मतलब जैसे हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जो लकड़ी होती है, इनफैक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ के लिए, जो कि होती है ऑक्सीजन, और उसके बाद पानी, ये सारी चीज़ें भी जो है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से और प्लांट हेल्थ से रिलेट करती हैं।
0: बिल्कुल.
1: इसीलिए भी हम इस डे को मनाते हैं, और इससे जो इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस मिलती है। सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर हम लोग डिपेंड करते हैं, इसी वजह से प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: सही काम. यूनाइटेड नेशन ने इस स्पेशल डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है ताकि दुनिया भर के जो देश हैं वो मिलकर पौधों की बीमारियों को जानें, उसे पेस्ट से बचाएं, कीड़े ना लगने दें, पर्यावरण के खतरे से बचाने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको बढ़ा सके. आज के क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ और ग्लोबल ट्रेड की वजह से प्लांट को नए नए खतरों का सामना करना पड़ता है, नए डेंजर्स का सामना करना पड़ रहा है. अगर पौधे अनहेल्दी होंगे दोस्तों, तो उसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे सीधा असर मैं कहूँ तो वो इंसानों और जानवरों पर पड़ता है और पूरी इकोनॉमी में भी पड़ता है.
1: बिल्कुल। और प्लांट हेल्थ का मतलब अगर हम समझे, तो प्लांट हेल्थ का ये मतलब है कि प्लांट्स का हेल्दी, डिजीज फ्री और प्रॉपर उनका जो ग्रोइंग कंडीशन है उसमें होना। जैसे इंसानों को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये इनसे सारी इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे वो अपना असर दिखाते हैं, तो वैसे ही पौधों में भी फंगस, कीड़े, जैसे कि पेस्ट वगैरह हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, उनको भी इन सबसे बीमारियाँ होती हैं। तो हमें प्लांट हेल्थ में हम सिर्फ ये नहीं समझते कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, हम ये भी समझते हैं कि उनमें वो बीमारियाँ कैसे होती हैं और हम कैसे उन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं उन
0: बिल्कुल सही कहा
1: प्लांट्स को।
0: उन्नति. और दोस्तों एक बहुत ही छोटी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हमें छुट्टियाँ मनाने का मन होता है, जब हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है अपने जीवन में, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? एक ट्रिप. कहाँ ट्रिप करना है? माउंटेन्स में ट्रिप करना है हमें, हमें किसी हरी भरी जगह पे जाके ट्रिप करना है. लेकिन जब हम शहर में रहते हैं तो उसी ग्रीनरी का ध्यान नहीं रखते. तो दोस्तों
1: जब भी
0: हम
1: हम ट्रिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ये भी इमेज आती है कि हम हिल स्टेशंस जाएंगे घूमने के लिए, तो वो किस लिए जाते हैं? ताकि मतलब जैसे जो शिमला और मनाली जैसी जगहें हैं, वो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली शहर के एनवायरनमेंट से बेटर है, इसीलिए वो हमारे दिमाग में भी आता है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों जब हम अपने सुकून को ढूंढने के लिए पेड़ों के बीच जाना पसंद करते हैं तो उन्हीं पेड़ों का एनवायरनमेंट हम अपने बीच क्यों नहीं बनाते।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो दोस्तों अपने बीच में भी

0: ज्यादा नहीं अगर लगा सकते तो एक आध पेड़ तो लगाते ही चलिए। तो अब इसी चर्चा को थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाते हैं उन्नति, तो जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स कैसे होते हैं ये हमें जानना होगा। वो बेहतर फसल क्रॉप बनाते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर प्लांट्स अनहेल्दी होंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी और भूख का और रिस्क जो उसका होगा वो बढ़ जाएगा।
1: मतलब जैसे हम तुमने बताया ना कि इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, तो इस तरह से वो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेगा। अब हम ये बात करें कि प्लांट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों है, तो ये तो सवाल पहली बात आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है हमारे अर्थ पर लाइफ का फाउंडेशन है। हमारे प्लैनेट की जो है वो नींव है। हम इंसानों और जानवरों दोनों को ही जो है हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट रीजंस जैसे कि हमने अभी बात ही की कि फूड सोर्स की तरह हम उसे यूज़ करते हैं, उसे दवाई उससे दवाइयाँ लेते हैं प्लांट से, फिर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है वो भी रिलीज होता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है। तो इस वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है ये कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है, और इसमें अगर कोई भी फैक्टर जो है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो इकोसिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों जिस तरीके से हम गाड़ियों का यूज करते हैं, जिस तरीके से हम वाहनों का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे तेजी से खत्म करने का या ये कहें उसे प्योरीफाई करने का सबसे सबसे असरदार जो तरीका है वो है प्लांट्स लगाना। क्यों? क्योंकि वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं।
1: और सिर्फ वाहन ही नहीं, हम जो एसी का भी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे रूम को अंदर से तो ठंडा कर देते हैं लेकिन वो एनवायरनमेंट को पीछे से बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जाती है। और इन सब की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका भी जो रिलीज होता है उनका वो भी इकट्ठा होने लगती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा प्लैनेट है वो एकदम गर्म हो जाता है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों पेड़ कितने ज़रूरी होते हैं ये शायद हमें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद भी जानते हैं। बट जैसा कि हमने अपनी चर्चा शुरू होने से पहले एक बात कही कि ये हम कितना समझते हैं, इसकी जिम्मेदारी कितनी लेते हैं, और ये अपने मन पे हम कितना लेके बैठते हैं कि हम इसके लिए काम करेंगे। इस पर हम अभी और बातें करेंगे उन्नति, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक बनता है?
1: बिल्कुल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, स्वागत है अपने प्रोग्राम में फिर से। तो उन्नति, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ की, तो इसके क्या मुख्य उद्देश्य है, जरा बताओ हमारे श्रोताओं को।
2: इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, सस्टेनेबल फार्मिंग को एनकरेज करना, किसानों को आधुनिक और सुरक्षित खेती की तकनीकों के बारे में सिखाना, हानिकारक पेस्ट्स और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित रखना, और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना। और ऐसा नहीं है कि ये दिन सिर्फ सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों और स्टूडेंट्स को और हम आम जनता को भी सिर्फ एक माध्यम देता है। ये चीज़ हम हमेशा कर सकते हैं, जब भी हमें टाइम मिले तो हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन इस डे को पर्टिकुलरली इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग जो है पौधों के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में और अच्छे से जानें, जहां सब मिलकर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स कर सकें।
1: बिल्कुल उन्नति, और सिर्फ एक दिन तक हम इसे सीमित ना रखें, हम इसे अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन करें, हम इसके बारे में जानें, अपने आसपास के पेड़ों को पानी के साथ साथ उन्हें खाद भी दें, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ का ध्यान सिर्फ हम ह्यूमंस को या एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को, अदर क्रिएचर्स को नहीं, हमारे पेड़ों को भी देना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, अभी अगर हम अपने से रिलेटेड कोई बात करें, मतलब युवाओं से रिलेटेड, तो इनकी क्या भूमिका है इस दिवस में? तो इनकी भूमिका है कि युवाओं का प्लांट हेल्थ अवेयरनेस में इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है, और कुछ आसान कदम वो उठा सकते हैं, वो है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में हिस्सा लेकर, पौधों को डैमेज ना होने देकर, गार्डनिंग की आदत को डेवलप करके, पानी को बर्बाद होने से बचाकर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फ्रेंडली उपायों के बारे में जानकर और उसे सीखकर, स्कूल कॉलेजेस और सेमिनार्स, पोस्टर्स, कॉम्पिटिशन्स और अवेयरनेस कैंपेन्स इस दिन चलाए जाते हैं दोस्तों, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सिर्फ इससे बाहर आकर आप प्लांट्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, कैसे उसे अच्छे से ग्रो होने दिया जाए, आप इसके बारे में

0: आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप वहाँ पे जाएं सब कुछ सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और किसान भी जो है वो भी प्लांट हेल्थ प्रोटेक्शन को समझ सकते हैं, वो उनको भी ये ज़रूरी है कि वो अवेयर हो इस चीज़ को लेकर के कि प्लांट हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना दिव्या कि किसान ही जो है वो प्लांट हेल्थ प्रोटेक्शन के मेन गार्डियंस होते हैं। अगर किसान सही तकनीक इस्तेमाल करेंगे तो फसलों को जो बीमारियां होती है, जो कीटों से नुकसान होता है, उससे उन्हें बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है
1: और
0: नीति।
1: उसके बाद जो हमारी जो पैदावार होती है, जो फूड की क्वालिटी होती है, जो फसलों की क्वालिटी होती है, वो भी इंक्रीज की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है।
0: तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो भारत देश है ना, वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसमें
1: बिल्कुल।
0: मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे जो कृषक होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं। तो उनके लिए ये दिन एक तरीके से कह ले स्वर्णिम अवसर है, अपने पेड़ पौधों को, अपने जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में जानकर उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनको कैसे और अच्छे से डेवलप किया जाता है। इसी के साथ उन्नति, जो तुमने अभी अर्थव्यवस्था वाली बात कही है, बहुत सही है कि खेती की दुनिया में करोड़ों लोग लाइवलीहुड का सोर्स होते हैं, और हेल्दी प्लांट्स किसानों की और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को ही सपोर्ट करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पौधे को किससे खतरा होना चाहिए, अगर उन्नति मैं तुमसे पूछूं तो जरा बता सकती हो?
1: जैसे कुछ ऐसे पेस्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, जैसे लोकस हो गए, कैटरपिलर्स हो गए, बीटल्स हो गए, तो इससे उन्हें जो है खतरा होता है। फिर जो किसान केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उन्हें नुकसान होता है। फिर जो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं, ये फसलों को कमज़ोर बना देती हैं। और कुछ ऐसी बीमारियों का नाम ले तो वीट रस्ट हो गया, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ हो गया, ये सारी बहुत ही हानिकारक बीमारियों में से मानी जाती हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का भी। तापमान में बढ़ोतरी, बरसात में असमानता और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती है, ये सारे पौधों के ग्रोथ पैटर्न को नुकसान पहुंचाती हैं।
0: और दोस्तों, सबसे मेजर कॉज इसका ये है प्रदूषण। प्रदूषण ही इन सभी चीज़ों का मेजर कॉज है। और प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे फैलता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट से, हार्मफुल केमिकल्स से, जो सॉयल में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं या एयर में होते हैं। वो एयर जब हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करने के लिए। तो सोचिए, अभी तक तो वो CO को, हमारे जो कार्बन को है, वो उसको प्योरीफाई कर रहे थे, लेकिन जब यही केमिकल युक्त एयर वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब उसमें जितना हार्मफुल केमिकल होता है वो भी तो उन पे असर करेगा,
1: बिल्कुल।
0: तो उससे
1: और फिर
0: प्लांट क्वालिटी खराब होगी।
1: वही चीज़ें छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो खाते हैं। फिर अल्टीमेटली वो एक जो फूड चेन होता है वो चलता है, और फिर उसके थ्रू वो हमारे अंदर भी आ जाता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, क्योंकि हमारा जो खान पान होता है वो कहीं ना कहीं फूड जो होता है हमारा, वो प्लांट पे निर्भर होता है। अब सोचिए, ऐसे केमिकल युक्त प्लांट्स को हम अगर कभी ईट करते हैं, हम उसको खा रहे होते हैं, तो वो केमिकल हमारे शरीर में भी जाके हमारे जो जीन्स होते हैं उसको खराब कर रहा है, हमारे जो हेल्थ है उसको खराब कर रहा है। ये सब चीज़ें एक सर्कल में, एक चेन में है, और इससे सिर्फ प्लांट्स को नुकसान नहीं, अगर मैं एक बात कहूँ, इससे हमको भी नुकसान है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दिव्या, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को जो है इस दिन का, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ का जो महत्व है, ये उन्हें समझ में आ गया होगा, और वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टेप्स अपने एंड से ज़रूर लेंगे, ताकि पर्यावरण को और जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनको जो है हम बेटर कर सके, अपनी इकोनॉमी को अल्टीमेटली बेटर कर सके।
0: बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है, और हमारे फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाए रखने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचाए रखने के लिए, सबसे इफेक्टिव वे यही है कि हम उसमें प्लांट को ऐड करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, और अपनी इकोनॉमी, अपने अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए, यही एक तरीका है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: दोस्तों,
1: कहा।
0: ये था हमारा आज का चर्चा, और हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और गीत के साथ।

0: दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान चिंतक, दार्शनिक और शिक्षक की जिनके विचार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को सोचने के लिए एक नई दिशा देते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने लोगों को ये समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा होती है। जय कृष्णमूर्ति।
1: जी दोस्तों, जिदू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले नामक स्थान पे हुआ था। उनका पूरा नाम जिदू कृष्णमूर्ति था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति को निहारा करते थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर एक अलग की प्रकार की संवेदनशीलता और गहराई थी।
0: समय के साथ उनका झुकाव अध्यात्म, चिंतन और जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर बढ़ने लगा। वो हमेशा ये समझने की कोशिश करते थे कि मनुष्य आखिर दुखी क्यों रहता है, भय क्यों महसूस करता है और जीवन में अशांति का कारण क्या है। जय कृष्णमूर्ति का मानना था कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर ही मौजूद है, भ्रम, डर और संतुलन से जुड़ी हुई है। वो कहते थे कि यदि व्यक्ति स्वयं को सही ढंग से समझ ले तो उसका जीवन अधिक शांत, सरल और सार्थक बन सकता है।
1: उन्नति उनके विचार सबसे बड़ी विशेषता थे उनकी जो जीवन में, और उनकी स्वतंत्र सोच। वे कभी नहीं चाहते थे कि लोग केवल किसी किताब, किसी परंपरा या किसी व्यक्ति के कहे हुए पे आगे चलें और उसे आंख बंद करके मान लें। वे हमेशा कहते थे कि हर व्यक्ति को स्वयं के विचार को अपने आगे ले जाना चाहिए और स्वयं पर विचार करना चाहिए। प्रश्न पूछने की उसको आदत होनी चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए।
0: और कृष्णमूर्ति ने जीवन भर दुनिया के कई देशों की उन्होंने यात्रा की और हजारों लोगों को इससे संबोधित किया। उनके व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, लेखक और सामान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल होते थे। वो कठिन विषयों को भी इतनी सरलता से समझाते थे कि हर व्यक्ति उनसे जुड़ाव महसूस कर सके।
1: श्रोताओं, उन्होंने शिक्षा से समाज में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल अंकों और डिग्रियों तक सीमित नहीं होती। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को बेहतर सोचने, संवेदनशील बनाने और सही निर्णय लेने की ओर उन्हें क्षमता दे।
0: उनकी इसी सोच के साथ उन्होंने भारत सहित कई देशों में विद्यालयों की स्थापना की और उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन स्कूलों में बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था बल्कि उन्हें प्रकृति से जुड़ना, स्वयं को समझना और जीवन के मूल्यों को भी सिखाया जाता था। उन्हें
1: प्रकृति के प्रति उनका एक बहुत ही अपार प्रेम था। वे मानते थे कि जब इंसान प्रकृति के करीब होता है तब उसका मन जो होता है वो अधिक शांत और स्पष्ट होता है। पेड़, पहाड़, नदी, बारिश और खुला आकाश, ये सब उसके विचार और जो भाषण में बार बार उसको दिखाई देने लगता है।
0: जय कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में कभी प्रसिद्ध या शक्ति को महत्व नहीं दिया। वो बेहद सरल जीवन जीते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि मनुष्य का आंतरिक विकास होना चाहिए।
1: उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि तुलना, ईर्ष्या और लगातार दूसरों जैसा बनने की इच्छा इंसान के भीतर से असंतुष्टि का भाव उसको पैदा करती है। वे कहते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग और विशेष होता है, इसलिए स्वयं को समझना और स्वीकार करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, आज के समय में जब लोग तनाव, प्रतियोगिता और मानसिक दबाव से जूझ रहे हों तब जय कृष्णमूर्ति के विचार और भी अधिक प्रासंगिक महसूस होते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल सफलता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि मन की शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी लिखी पुस्तकें और दिए गए व्याख्यान आज भी पूरी दुनिया में पढ़े और सुने जाते हैं और युवा पीढ़ी उनके विचार से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर दिशा देने का प्रयास जरूर कर रही है।
1: उनका संदेश था श्रोताओं कि सच्चा परिवर्तन किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं होता बल्कि व्यक्ति की सोच और चेतना से शुरू होता है। यदि मन शांत हो, जागरूक हो तो जीवन के कई प्रश्नों को सही उत्तर और उसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है, वो स्वयं के अंदर ही होता है।
0: बिल्कुल दिव्या, और जैसे जय कृष्णमूर्ति थे।

0: ना तो आज के टाइम पर जैसे हम दूसरों से, हम युवा पीढ़ी जो है, जैसे हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को कि उसके पास तो ये अच्छा है, मेरे दोस्त के पास ये अच्छा है और हमारे पास ये नहीं है, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए और उसके बाद ये कंपैरिजन वाली जो आदत है ये हमें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।
1: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो हम प्रेरणा पुंज में लेकर आते हैं उससे आप थोड़ा बहुत कुछ तो सीखते होंगे और उनको, उनके विचारों को आप अपनी लाइफ में अमल करने की कोशिश करते होंगे। तो श्रोताओं, हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट करियर की बात में, और इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं इस वीक की जो हमारी वैकेंसी अपडेट्स होती हैं। तो उन्नति, हमारी जो वैकेंसी अपडेट्स हैं, ज़रा उनके बारे में बताओ।
1: सबसे पहले तो है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C या D के लिए

0: रिक्रूटमेंट 2026, इसकी जो डेट्स है ये है 24 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। ये एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम मोड में लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसकी जो एज लिमिट होती है ग्रेड डी के लिए वो होती है 18 से 27 साल, और ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी लोग 10+2 या इंटरमीडिएट से पढ़े हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं ssc.gov.in पर।
1: तो दोस्तों दूसरी वैकेंसी जो है हमारी वो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट है और 2026 के लिए आई है। इसकी जो तारीख है वो 21/4/2026 से इसका शुरू हो चुका है रिक्रूटमेंट, और 15/5/2026 तक इसकी विंडो ओपन रहेगी, और 1,565 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है MSc इन मैथ्स, स्टैट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में UPSSC पेट 2025 स्कोर कार्ड के आधार पर इस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप UPSSC.gov.in पर जाकर अपनी सारी योग्यता उसमें देख सकते हैं।
0: इसके बाद CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CSET 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसकी डेट्स है 11 मई से लेकर के 10 जून तक 2026। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये है 6 सितंबर 2026। और जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ctet.nic.in।
1: अगली वैकेंसी है दोस्तों उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC असिस्टेंट प्रोफेसर BEd रिक्रूटमेंट है 2026 के लिए। इसकी डेट्स जो ओपनिंग डेट थी वो 28/4/2026 थी और क्लोजिंग डेट है 27/5/2026 के लिए। मैक्सिमम एज है आपकी 62 साल की और नंबर ऑफ पोस्ट है 107। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो MSc इन साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप UPSSC.UP.GOV.IN पे अप्लाई कर सकते हैं।
0: और इसके अलावा नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT ब्रांच 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसकी डेट्स हैं 16 मई 2026 से 1 जून 2026 तक। इसकी एज जो है आपकी एज 1 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। और फिर टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल 15 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। फिर आप इनकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें तो वो है joinindiannavy.gov.in और इस पर लॉगिन करके आप इनकी अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों ये थी हमारी वैकेंसी वीकली अपडेट्स, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जो हम प्रश्न काल लेकर आते हैं हर दिन, तो हमारा जो कल का प्रश्न था वो था उन्नति,
0: भारतीय संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन कौन होता है?
1: और इसका सही उत्तर है न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और सही उत्तर देने वाले श्रोताओं के हमारे मित्रों के नाम हैं कीर्ति सिंह, आदर्श दीक्षित, उन्नति, सुधांशु और पंकज त्रिपाठी। तो इन सभी को ढेरों धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और अपना जो रिप्लाई होता है वो इसमें आप देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का प्रश्न है वो है
0: अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। सवाल एक बार फिर से सुने, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8004926250 पर, और जिनका सही उत्तर होगा हम उनका नाम शामिल करेंगे कल यानी कल के युवाणी कार्यक्रम में।
1: तो दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ और हम जाते जाते बस इतना कहेंगे कि आप हमें हम रिव्यू दें, वो आप दे सकते हैं yuvvaniald@gmail.com पे,
1: और हमारे नंबर 8004926250 पर।
0: तो इसी के साथ मैं दिव्या
1: और मैं उन्नति
0: लेते हैं विदा।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में

0: अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। तो पहले आज के शेष कार्यक्रम, 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे इंदु शेखर त्रिपाठी से रामायण पाठ। साथ ही डॉक्टर एजाज अहमद से मनोज कुमार सिंह की बातचीत होगी, विषाक्त हरा चारा कारण और बचाव। साथ ही बाबूलाल दिवाकर और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुमधुर भाषिणी तिवारी से भजन और गीत सुनिएगा। 7:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा 9:30 पर। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का ख्याल गायन। और रात 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे राणा प्रताप सिंह से की गई बातचीत, औद्योगिक फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता होगी, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुबह 7:30 पर उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, दोपहर 12:15 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन और 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। ये

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे, 11:30 पर, शाम 5 बजे और रात 8 बजे और रात 10 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में तरुण नंदी के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा 9:50 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 10:30 पर। वॉइस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर। अपने फ़ोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में 11:30 पर। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। लोकगीतों के कार्यक्रम में 2:30 पर कलाकार होंगे शोभा लाल, प्रियंका चौहान, ब्रजभान यादव। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम होगा। 7:31 पर कार्यक्रम सुनिएगा बोलते नगमे, प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुनिएगा। तो ये थे हमारे कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: हरियम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतं द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধান

0: राम राम।
1: आ घनश्याम भैया, का हाल चाल बाहु?
0: बैजू भैया हो, देखा हाल चाल तो ठीक बा हो। यही समय देखा किसानन के न भैया हो, समय नहीं हो। एक चीज खत्म दूसरके में लगा, दूसरा खत्म तीसरके में लगा। अब बैजू भैया किसानी यही के कहलो जाला।
1: भाई खेती किसानी ये तो जीवन उपाय है, अब हमें खेत खाली रखे रहा तो कौन फायदा है?
0: यह बिल्कुल
1: कुछ न कुछ तो रहे के चाहे ना। तो भैया हो रहे तो चाहे मुन जरूरी भी बाकी खेत मजबूत भी रहे। ई नहीं कि पता चली कुल हमें खाली पैदावार ही ले के चक्कर में है, कुछ डालत नहीं है, वो हमें उपजाऊ नहीं बनावत है, तब वो दिक्कत
0: ये हो। देखा माटी कमजोर रही तो भैया उपज भी कमजोर रही बच्चों। और देखा एक बात और हो कि भैया माटी के मजबूत बनाओ बदे जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे से खरीदा। बहुत सा ऐसा चीज हो जौन अपने घरे अपने खेते अपने खरिहाने में पैदा हो जाला।
1: ये बात तो सही कहते है भैया, पैदा भी होत बा आ वही के हम ले जाए कहूँ फेंक देते ही
0: फेंक देते हाँ।
1: चाहे तो हम सोना बनाई सकी थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो। तो देखा जितना भी अब जैसे कहते है ना कि भैया हो देखा आप आज न हो, जुग जमाना बदल गया, रासायनिक खाद आवे लगल और तमाम तरह के चीज है, लेकिन पहले हो बैजू भैया खेतवे से पैदा हो, खेतवे में दबाए जाए, खेत का माटी हो मजबूत हो, या फसल एकदम

0: भैया लल हाथ रहे।
1: भैया हो, पहले देखा सबका कहा था, जब रासायनिक खाद दवाई नहीं रही तो जितना भी फसल के अवशेष होत रहा, कूड़ा करकट जेका आज समझा जात बा, हाँ, आउ का कहा थी बहरे फेंक देत बा, क्यों जलाए देत बा, जैसे कुछ लोग पराली जलाए देते हैं, हाँ, जबकि उसे बहुत नुकसान भी बाँटे है, तो उस सब सड़ाए के भैया ना खाद बनाए दे तो माटी के मजबूती जवन के है ज़्यादा बढ़िया रहा था।
0: बिल्कुल हो, बिल्कुल यो नहीं कि बहुत बड़ा काम, बहुत मेहनत वाला काम हो भाई। वैज्ञानिक भैया लोग तमाम तरह का ऐसा ऐसा तरीका खोजना हो, घरे का कूड़ा हो, करकट हो, हाँ, पशु जहाँ बांधल गए हैं वहाँ का साफ सफाई करके देखा, वहाँ से भी तमाम तरह का चीज़ निकलत बा। गोबर में, बायोगैस में भैया गोबर डाल के जौन खाद बन जाए, आई तक खाद हो बैजू भैया, अपन पर्यावरण अच्छा रही।
1: भैया बायोगैस तो जाए दे, अब तो भाई वही गोबर से केचुआ वाली खाद कितना
0: खाद
1: बढ़िया बन
0: बिल्कुल
1: जात
0: बिल्कुल
1: बा।
0: बिल्कुल
1: अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जौन जैव अब घटक बाटन, चाहे फसल को हो या और भी जो घास पात पेड़न के पत्ती
0: कौनो
1: बाटिन,
0: तरह से
1: हाँ,
0: भैया, बिल्कुल
1: उसे उपयोग कैके हम तो खाद बनाए के अपन खेत मजबूत कर सकी था। जब खेत मजबूत होए तो भैया उनका रासायनिक खाद की निर्भरता कम होए,
0: कम हो जाए बैजू भैया,
1: और
0: और जौन
1: उससे जवन
0: पैसा,
1: हाँ
0: हाँ
1: तब तो खेती की लागत भी कम
0: कम
1: आए,
0: हो जाए, हाँ
1: अब माटी के संरचना बढ़िया होए भैया,
0: संरचना हो, जौन से अनाज पैदा हो, वो बड़ी शक्ति वाली चीज बा,
1: शक्ति वाली होए,
0: हाँ
1: वो हानिकारक ना होए, हमारे पर्यावरण भी सही रहे। और भाई कहा थी ना, देखा तमाम तो मनई पुरानिया से कहा ना, तो भैया कहा थी ना, अब तक तो खा दिया जौन हमें पौड़त ही रहा था, अब हमारे नुकसान करत जौन,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पहले तो खाए पिए ही मेरे देखा रासायनिक खाद डाली ही नहीं जात रही जौन बाटे है। तो भैया हो, धीरे धीरे हम जैविक खाद हरी खाद, हाँ, ये सब जैव अब घटक वाली जोन बचत बा ओका खाद, ये सब के बनाए के इस्तेमाल करी और खेती का लागत कम करी। आवे वाले समय में जैसे खरीफ के मुख्य फसल धान लगाई जाए, तो ओकरे पहले जरूरी बात देखा किसान भाई मूंग उंग बोए आए,
0: हाँ
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: तो भाई मूंग तोड़े के बाद अगर ओकर हम जोताई के सड़ाई सड़ जाए, जोताई कराई दें पानी लगाए के, हाँ, तो भैया हो वो गजब के बढ़िया खेत बन
0: खूब
1: जाए।
0: खूब भैया, खूब बढ़िया हो जाए हो, समझ लो कि जितना दाना डलबे ना धरती के नीचे, कुल अंकुरित तो हुई है, मजबूत भैया फसल हुई, मजबूत पैदावार हुई।
1: सही
0: हाँ
1: कहे भाई, हमारे किसान भाई इनके सोचे कि चाहे अब भैया हो बात आवत बा, देखा कि जौन भी हम तो बिया बिसार बोई थे, अब जैसे माल धान के नर्सरी डालब, अब माल अपने घरे के धान भी रखे यही, तो का ओकर उपचार करी थे, तो बीज के उपचार बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी, कहें चे देखा खेती के शुरुआत वही से हो,
1: भाई
0: कहल जाला न हो कि जैसन बीज रही वैसन पैदा भी हुई,
1: पैदावार
0: हाँ
1: रहे, आजकल बेरामी देखा दुई प्रकार का ज़्यादा, बीज जनित और माटी जनित, तो
0: यह
1: दोनों के शोधन बहुत जरूरी बा। अब माटी के शोधन तो भाई तबई हो जाए जब हम माटी के जांच कराए ले
0: जांच कराए
1: भैया,
0: भैया, अब जांच कराए के माटी का शोधन कैला, बीज
1: हाँ।
0: शोधन करा हो, हम कहीं भैया जौन कीट बेरामी हैं वो तो वैसे खत्म हो जाइए।
1: हाँ, तो भैया हो लागत कम हो जाए जवन बाटे, जब फसल बढ़िया हो, जब कोनो बेरामी न लागे, तो बीज के उपचार जवन भी फसल लें ओका उपचार वैज्ञानिक भैया हरे भी बताओ थी, अपने हियाँ भी समय समय पे विशेषज्ञ से बात करके भाई बतावा जात रहा, तो बीज उपचार कई के जो है जवन बाटे तब बुआई करें तो फसल बढ़िया होए
0: बढ़िया
1: भैया।
0: हुई हो, देखा भैया बीज उपचार नहीं होते ना तो भैया अंकुरण अच्छा हो, फसल अच्छा हो, तो डेढ़ गुना बीज डाल देना है, हाँ? हम
1: हाँ
0: कहीं भैया बीज शोधित हो, उपचारित हो, तो उतना ज्यादा की जरूरत नहीं, हर बीज से बढ़िया अंकुरण भी आई,
1: अंकुरण बढ़िया होए, या भाई लागत भी कम लागे, बीया भी कम लाग डाले के परे जोन बाटे है, और रोग दोख रहित तो होए हो,
0: बिल्कुल
1: तो ये तो भैया किसान भाई इनके सोचे बिचारे के चाहे। आज देखा रामायण पाठ के भी दिन बाहा, तो मैं का कहा थे इंदुशेखर त्रिपाठी से रामायण पाठ भी सुनवाई जाए किसान
0: बहुत
1: भाई
0: बढ़िया,
1: इनके।
0: बहुत बढ़िया भैया,
1: अब देखा हो गर्मी के समय चलत बा, किसान भाई अपने पशुओं के लिए हरा चारा जोन बाटे है ना बोए हैं खियाओ थे, लेकिन जरूर बा कि सावधानी ना बरती है तो कहूँ कहूँ देखा वो विषैला बन जाए
0: विशाला भैया,
1: और बड़ा
0: बिल्कुल
1: हानि करत
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: भैया हो वो कौने कारण से विषाक्त हो जाए तो का बचाव करे चाहे, पे भी बात बत कही सुनवाई जाए,
0: बहुत बढ़िया,
1: मुनावा करे पहले किसान भाई ने कुछ गीत गौ नहीं सुनवाई दिया
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो देखा बाबूलाल दिवाकर के गाई गौ नहीं भी किसान भाई एक सुने जोन
0: बिल्कुल
1: बा,
0: सुनवाया था।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: भैया घनश्याम, अभी देखा हो बाबूलाल दिवाकर गौ नहीं भी किसान भाई सुने ना,
2: खूब भैया, खूब भैया,
1: माटी ऊपर छानी छप्पर, सही बात है भैया। हम कहीं देखा हो रामायण पाठ के दिन आज मंगलवार है जोन बाटे है। अब भाई रामायण पाठ में ऐसा ऐसा प्रसंग है ना, बड़ा सीख मिलत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: घर परिवार में समाज में कैसे रहन सहन हो, चाहे कैसे समरसता बनी रहे। तो आज देखा रामायण पाठ श्री इंदु शेखर त्रिपाठी जी के है, और का कुछ प्रसंग बतावत बाटन किसान भाई इनके। तो किसान भाई एक का सुनई।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सुनई।
3: वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रति 12वें वर्ष के बाद प्रयागराज में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। प्रयागराज का प्रभाव वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए, उसमें 14 रत्न निकले, अमृत कलश लेकर दैत्य भागे, नासिक उज्जैन हरिद्वार और प्रयाग में कलश रखे। इन जगहों पर हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है। प्रयागराज का महत्व बहुत ही विशाल है। को कह सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। पाप रूपी हाथियों के झुंड पर ये मृगराज सिंह के समान दौड़कर और प्रत्येक पाप के पुंज को नष्ट कर दिया करते हैं।

प्रभाऊ, प्रयागराज में स्नान करने पर, तर्पण करने पर, दर्शन करने पर तत्काल प्रभाव पड़ जाता है और मनोकामना तत्काल पूरी हो जाती है। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। यहाँ संत महात्मा अलग अलग वेश में दर्शन देते हैं, कोई सन्यासी तो कोई नागा, कोई तपस्वी, कोई मौनी। यह चलता फिरता प्रयागराज है, इसमें दर्शन से जीवन मंगल में हो जाता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर मजन समन कलेशा। यह सबको सब दिन और सब देशों में सुलभ है, इसके दर्शन मात्र से सारे के सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा।

अगशुकर्मा। यहाँ किले के अंदर अक्षयवट वृक्ष है जो यहाँ प्रलय के में भी कभी नष्ट नहीं होता है, इसी कारण से इसे प्रयागराज कहा गया है और अमर वृक्ष भी कहा गया है। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो प्रयागराज को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। स्वयं सुख निधान है, आनंद के सागर हैं, परंतु प्रयागराज को देखकर इतने आनंद में डूब गए जिसकी सीमा ही नहीं रही। और देखिए, प्रत्येक राजा के अलग अलग अंग होते हैं। इनके सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी समेत हितकारी। इनका मंत्रिपरिषद का गठन सत्य का है, सभी मंत्री सत्य स्वरूप हैं। श्रद्धा इनकी परम प्रिय नारी हैं, माधव इनके हितकारी मित्र हैं। यहाँ सब मिला के 12 माधवों की चर्चा हुई है, बेणी माधव जी, चक्र माधव जी, शंख माधव जी, आदि माधव जी। इस प्रकार से अनेक माधवों की चर्चा इसमें हुई है। इनके दर्शन से सारे के सारे दुख और कष्ट मिट जाया करते हैं। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। इनके भंडार में चार प्रकार के पदार्थ भरे पड़े हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस कामना से जो भी व्यक्ति आता है उसके समस्त कामनाओं का यहाँ पूर्ण रूपेण निपटा दिया जाता है, उसे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्ष न पावा। चारों तरफ से गंगा यमुना से घिरा हुआ यह इनका गढ़ अभेद्य है। स्वप्न में भी कोई शत्रु इन पे आक्रमण नहीं कर सकता और इनके इनका इनका किला कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। सेन सकल तीरथ बरवीरा, कलुषयने कदल नरन धीरा। संसार के जितने भी तीर्थ हैं सब इनके सेना के रूप में हैं। संसार में कभी भी किसी भी स्थान में, किसी भी तीर्थ में आप स्नान करें, अवगाहन करें, तर्पण करें, सारे के सारे पाप इनकी सेना अपने आप आपको शमन कर लेती हैं और आपको पाप से मुक्त कर देती हैं। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देख हो ही दुख दारिद भंगा। इनका छत्र जो टंगा हुआ है इनके सिंहासन के ऊपर, जमुना जी और गंगा जी चमर के रूप में हमेशा डुलाया जाया करती हैं और झरा करती हैं, जिससे दुख और दारिद्र तत्काल ही मनुष्य के जीवन के समस्त नष्ट हो जाते हैं। से

साधु महात्मा सदैव इनके सुकृत का गुणगान गाया करते हैं। वेद पुराण ऋचाएं जितने भी हैं सब वंदी वेश में वृंदावली इनका गा गा कर समस्त संसार को सुनाया करते हैं। इन प्रयागराज का वर्णन चारों वेदों में 18 पुराणों में उपनिषदों में हर जगह विकसित रूप से बहुत विशाल रूप से हमेशा वर्णन करके और इनका यश सदैव गाया गया है। भरत दरस देखत खुल्यो मगलोगन कर भाग जिम सिंघल बासिन भयहू विधि बस सुलभ प्रयाग। अभी तो मैंने आपके समक्ष चार प्रयागराज का वर्णन किया और आप देखिए प्रयागराज अपने भक्त के साथ अपना स्थान छोड़ देते हैं और अन्यत्र जहाँ भी देखा जाए भाव से प्रकट होकर और सुख देते हैं समस्त प्राणी के समक्ष।

आनंद में डुबो देते हैं। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे भगवान राम को मनाने के लिए, तो चित्रकूट जाने के पहले वो भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं, और आश्रम में आने के बाद जब उनसे आदेश लेकर चित्रकूट की तरफ चलते हैं, तो ये प्रयागराज जी भरत जी के रूप में ही आगे उनके साथ लग गए और स्वयं प्रयागराज के रूप में भरत जी दिखाई पड़ रहे हैं। बांदा के लोगों ने मार्ग में मिले जितने भी लोग हैं आज भरत जी का दर्शन करते हैं, तो उन्हें साक्षात प्रयागराज का दर्शन हो रहा है। गंग सकल मोद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूला। गंगा जी में जो व्यक्ति स्नान करता है, त्रिवेणी में दर्शन करने पर सारे के सारे पाप अपने आप साथ छोड़कर भाग जाया करते हैं। संसार के जितने भी मंगल हैं, समस्त मंगल गंगा जी के अवगाहन से प्राप्त होते हैं, और अमंगल जितने हैं वो मात्र इनके दर्शन से सब दूर हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के मात्र दर्शन से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है, और आदमी अनन्य आनंद का अनुभव करता है। ये पहाड़ से निकली हुई हैं गंगा जी, हिमालय से इनका उद्गम हुआ है। हेमगिरि के बर शिखर सन

कुमार भरत जी, जब त्रिवेणी के तट पर आते हैं और अपने भैया प्रभु राम के वियोग में संतप्त हैं, देखते हैं जमुना जी को और गंगा जी को, तो जमुना जी का जो रंग है श्याम रंग है, जमुना जी को अपने भाई प्रभु राम के स्वरूप में देखकर हाथ जोड़ते हैं, तो पहले जमुना जी का ही नाम लेते हैं।

और उन्होंने प्रयागराज से मांगा। मांगते क्या हैं? कहते हैं कि आर्द जो होता है वह अपना धर्म भूल जाता है। आज मैं रघुवंशी कुमार अपने धर्म को भूल कर आपसे भीख मांग रहा हूँ। त्रिवेणी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयागराज से प्रार्थना कर रहे हैं

ये जमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और मैं रघुवंशी हूँ, सूर्यवंशी हूँ। आज अपने पुत्री के यहाँ मैं भीख मांगने खड़ा हूँ। पुत्री का धन लेना सबसे महान पाप है, विष के समान है। और कहा, गंगा जी ये ब्रह्मा की पुत्री हैं, हमारे पूर्वज महाराज दिलीप के द्वारा, भागीरथी जी के द्वारा लाई गई हैं धरती पर, भूतल पर, उनके पुत्री के समान है। आज मैं अपने ही वंश के पुत्रियों के यहाँ भीख मांगने पर तुला हुआ, भीख मांग रहा हूँ और हमें दिया जाए। प्रयागराज ने कहा, क्या चाहते हैं भरत कुमार आप? तो कहा उन्होंने, अर्थ

0: जिस प्रकार से सोना आग में तपाया जाता है और तब कर पानी की तरह बहने लगता है, वैसे ही प्रियतम के अनुराग में परीक्षा जब होती है तो शरीर स्वर्ण के समान गलकर पानी के समान जब बहने लगता है तब वास्तविक प्रेम का अनुभव होता है। वास्तविक प्रेम की परीक्षा में कोई पास हो जाता है। देखिए, चातक पक्षी जो है वो हमेशा स्वाति के बूंद की ही कामना करता हुआ और बादलों की तरफ रट लगाए रहता है, रटता रहता है, चाहे ऊपर से उसके बदले में बादलों के तरफ से पत्थरों की वर्षा हो, उपल वर्षा हो, फिर भी चोंच टूट जाए, पंखे टूट जाए, ढकने टूट जाए, गंगा जी में गिर भी जाता है, फिर भी स्वाति के जल के अलावा वह किसी जल के तरफ देखता नहीं है। वैसे ही मेरा अनुराग, मेरी भक्ति बड़े भैया राम के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है। मैं जब तक उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। आपने दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरने न जाय। भरत जैसे महात्मा का हृदय संतप्त है, बिरह सागर में डूबे हुए हैं और आपके यहाँ प्रयागराज में आकर उन्हें कुछ शांति प्राप्त होती है और भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम में पहुंचकर उनके चरणों में सुंदर सुंदर निवेदन करते हैं और प्रयागराज जी का दर्शन करते हैं।
1: हाँ भैया घनश्याम, प्रयागराज का महत्व काबा है रामायण में।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: करे बारे में देखा आज रामायण पाठ में श्री इंदु शेखर त्रिपाठी जी बड़ा बढ़िया से
2: बहुत
1: प्रसंग बताएं जोन बाटे है, बड़ा सीख भी मिला प्रयागराज के बारे में जान के जोन बाटे। तो हम तो भाई किसान भाई एक सुनें और समझें प्रयागराज का महत्व है तो जनते ही बाटन भाई।
2: बिल्कुल भैया, ये तो विश्व प्रसिद्ध बा,
1: विश्व प्रसिद्ध बा। अब देखा हो हम सब पशुपालन का भी काम करी थे, अपने पशुअन के लिए गर्मी में हरा चारा और भी चारा इस्तेमाल करत बाटी है, कभों कभों अगर ध्यान ना दिया जाए तो विषैला भी हो जाता
2: है। विशेष रूप से हो देखा भाई भैया, ये गर्मी में जो चरी होता है ना भैया, देखा में तो खूब हरियर लगता हो हाँ। लेकिन भैया बड़ा नुकसान दे,
1: नुकसान एक बाकी भाई अगर गर्म में खिया दे तो नुकसान करे। तो यही कुल बात पे देखा आज विषाक्त हरा चारा कारण व बचाव पे डॉक्टर एजाज अहमद जिस खान से मनोज कुमार

0: तिनक बात बत कही भैबे किसान भाई एक सुनयो समझें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखा भैया, खेती किसानी के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं, और पशुपालन में आपन भैया पशुधन स्वस्थ रहें और उनसे लाभ मिलत रहे, ये बारे हरा चारा का बहुत महत्व होता है। लेकिन हरा चारा कबो कबो विषाक्त हो जाता है और वो जो न कि अपने पशुओं बदे काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो विषाक्त हरा चारा का कारण है, कहाँ विषाक्त हो जाता है और ओकर बचाव कोने ढंग से किया जाए, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आमंत्रित हैं डॉक्टर एजाज अहमद खान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहब कि ये विषाक्त हरा चारा हाउ का।
2: ज्वार, ओट, मक्का, जांस ग्रास एवं सूडान घासों में विषाक्तता की स्थिति पाई जाती है। ज्वार व कुछ अन्य फसलों में विषाक्तता की जानकारी देने से पहले मैं ज्वार के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज्वार ही एक ऐसी फसल है चारे वाली जिसमें सबसे ज़्यादा विष पाया जाता है। मक्के और ओट से विषाक्तता बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ज्वार, सूडान घास और जांस ग्रास में विषाक्तता होती है और इन सब फसलों में सबसे अधिक विषाक्तता ज्वार में होता है। ज्वार भारत के दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों के बारानी क्षेत्रों के गरीब लोगों का मुख्य भोजन है। इस फसल की खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। ज्वार की खेती उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी व खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। उत्तर प्रदेश में ज्वार की फसल मुख्य रूप से चारे के लिए उगाई जाती है। चारे के लिए ज्वार का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। जानवरों को ज्वार हरे चारे के रूप में दिया जाता है, सूखे चारे के रूप में दिया जाता है और साइलेज बना करके भी खिलाया जाता है। इस प्रकार ज्वार पशुओं का महत्वपूर्ण एवं पौष्टिक चारा है। ज्वार के दाने में 10.4% प्रोटीन, 1.9 फैट, 1.9% खनिज लवण तथा 74% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ज्वार की प्रोटीन में लाइसीन नामक अमीनो अम्ल की मात्रा 1.4 से 2.8% तक पाई जाती है। इस अमीनो अम्ल में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है। ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक ज्वार खा लेने से मनुष्यों में पिलग्रा नामक बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, ये तो आप विशेषता बताएं कि ई जो न कि जो हरा चारा एकर का लाभ होता है, लेकिन देखे में आओ थे कि कभो कभो जहरीला हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, तो हम आपसे जानना चाहते कि विषाक्तता का कारण का वो है।
2: यह विषाक्तता जो होती है ये दो तरीके से हरे चारे वाली फसलों में होती है। एक तो कुछ फसल ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोसायनिक अम्ल पैदा हो जाता है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है।
1: अच्छा।
2: हाइड्रोसायनिक अम्ल जिन पौधों में अधिक होता है वो है ज्वार की फसल, सूडान घास और जांस ग्रास। ज्वार के पौधों में HCN या जिसको हम हाइड्रोसायनिक अम्ल कहते हैं, ये स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। पौधों की छोटी अवस्था में हाइड्रोसायनिक अम्ल विष का एकत्रीकरण हो जाता है। इस अवस्था में पशुओं को चारा खिलाने पर उनकी मृत्यु हो सकती है। एक बार में हाइड्रोसायनिक अम्ल का 0.5 ग्राम मात्रा का सेवन पशुओं के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। पौधों की वृद्धि के साथ साथ हाइड्रोसायनिक अम्ल की सांद्रता पौधों में कम होती जाती है। वर्षा या अधिक सिंचाई से भी पौधों में इसकी मात्रा कम हो जाती है। नत्रजन देने से पौधों में हाइड्रोसायनिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोसायनिक अम्ल घुलनशील होता है, नीचों की पत्तियों में यह कम पाया जाता है और ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं इसकी मात्रा अधिक होती है।
1: अच्छा। जो हाइड्रोसायनिक अम्ल का आप बात करते हैं, HCN जो ने के कहा जाता है, एकर हो एक का कारण है, कौन कारण से हो जाता है?
2: इसका कारण यह है कि मैंने बताया कि यह जो हाइड्रोसायनिक अम्ल होता है यह प्राकृतिक रूप से इसके अंदर पाया जाता है। ज्वार व कुछ पौधों के एपिडर्मल कोशिका में साइनोजेनिक अणु होते हैं, यह इसका वैज्ञानिक कारण है। स्वस्थ व तने से जुड़े मजबूत पत्तियों में यह जो अम्ल होता है यह जहरीला नहीं होता, बाकी में जहरीला होता है। एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल सेल में एक एंजाइम पाया जाता है जो पत्तियों के कटने छिलने पर हाइड्रोसायनिक अम्ल को धुरिन से अलग कर देता है। ये हाइड्रोसायनिक अम्ल साइनाइड ग्रुप का होता है जो रक्त में पहुंचकर उसे कोशिकाओं

0: तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकता है, इसलिए पशु ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये जो हाइड्रोसायनिक अम्ल होता है इसके बढ़ने के कई कारण होते हैं।
1: अच्छा,
0: एक तो जहां पर तापक्रम अधिक होता है जैसे अप्रैल मई जून का महीना, ऐसी जगह पर यदि ज्वार की फसल बोई जाती है तो उसमें विषाक्तता अधिक होती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी यह हाइड्रोसायनिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
1: जी,
0: जिन खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर यदि ज्वार या चरी को बोया जाता है तो उसमें भी हाइड्रोसायनिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तेज बढ़ने वाली फसलों में भी अधिक होता है। सूखे व पाले की स्थिति में भी इसकी मात्रा अधिक होती है। दाने वाली फसल में इसकी मात्रा अधिक होती है और निचली पत्तियों में इसकी मात्रा कम और ऊपर की नई पत्तियों में इसकी मात्रा अधिक होती है।
1: अच्छा, अब जैसे मान ले कि विषाक्तता फैल गए बा, चाहे जैसे कि एक तरीके के जहर का असर हो गया बा, तो एकर का लक्षण बा कैसे पता चली?
0: इसका लक्षण यह है कि पशु के मुंह से बहुत अधिक मात्रा में लार निकलने लगता है, उनको सांस लेने में कष्ट होता है, शरीर में ऐंठन और कंपन होता है और मसूड़ों का रंग भूरा या हल्का नीला लिए हुए होता है।
1: अच्छा, तो भैया हम ये जानना चाहब ऐसे कि जैसे अगर जहर का लक्षण दिखाई देत बा कि अपने पशुधन में एकर लक्षण लोकत बा, तो फिर ओकर का उपचार है?
0: इसके लिए किसान भाई को सबसे पहले जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे डॉक्टर से संपर्क करें। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर किसान के पास सोडियम थायोसल्फेट नामक दवा उपलब्ध है तो उसका इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा दें, तो इससे बीमारी नियंत्रण में आ जाता है। और इसके लिए इलाज करने से पहले बचाव जरूरी होता है। तो जहां पर ज्वार की फसल पैदा किया जाए वहां पर ये देखा जाए कि अगर गर्मी की का मौसम है तो वहां पर पशुओं को न जाने दें, और जो नत्रजन फसल में डाली जाती है उसको एक ही बार में न डालकर कई बार में दें।
1: अच्छा,
0: कम से कम 40 से 50 दिन के फसल को ही खिलाएं। पशुओं को गर्मी के दिनों में खेतों में जाने से रोकना चाहिए। बिना सिंचाई या बारिश हुए चारे को बिल्कुल न खिलाएं। पाले की दशा में भी चारों में यह हाइड्रोसायनिक अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, इसलिए पाला जब पड़े तो उस वक्त भी इसको बचाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हाइड्रोसायनिक अम्ल रहित प्रजातियों को उगाएं, जिसके लिए एमपी चरी है CSH21, CSH13 और CSH23 जो प्रजाति है इसको उगाएं। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोसायनिक अम्ल के अलावा कुछ फसलों में नाइट्रेट अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है।
1: जी,
0: इस एकत्रित होने का मुख्य कारण यह है कि जिन खेतों में यह बोया जाता है उसमें नत्रजन पहले से अधिक मात्रा में रहता है और जो फसलें वहां पर उगाई जाती हैं उनमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसी फसल को या चारे वाली फसल को जब पशु खाते हैं तो उनमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। यह नाइट्रेट पशु के जो रूमेन होता है उसमें पहुँचने के बाद यह नाइट्राइट में बदलता है और यह नाइट्राइट बाद में अमोनिया में बदलता है। लेकिन जहां पर नाइट्राइट की मात्रा अधिक हो जाती है नाइट्रेट की अधिकता के कारण, वह नाइट्राइट सीधे आंत में पहुंचकर खून में मिल जाता है और खून में मिलकर जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता और पशु मर जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया, हम कहें कि जो हिसाब से आप बताएं डॉक्टर एजाज अहमद खान जी, निश्चित रूप से पशुपालक भैया के बातन का ध्यान रखे पड़ी, अगर ध्यान रखी है तो उनके ऐसे लाभ हुई। आपकी जानकारी दे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया हम कहीं देखा ही विषाक्त हरा चारा कारण व बचाव पे डॉक्टर एजाज अहमद खान से मनोज कुमार सिंह के बात बत कही किसान
3: बहुत,
2: भाई
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: सुनंत भाई गुनई और पे विचार कर रहे ओका अमल में ले जाओ यहाँ, तब जोन बाटा इससे बचाव भी हुए। थोड़ा ही बता दिया जाए भाई कि देखा हम सब कार्यक्रम देखा रामायण पाठ दे ही जब दे रोज़ कुछ ना कुछ भाई इस तरह का जानकारी दी ही जाता किसान भाई इनके, तो किसान भाई इनकी मन कहत हो भाई कि हम कुछ बात भी
3: कुछ उन्हों को विचार
2: विचार होए कि कार्यक्रम हमका अच्छा लागत है और का सुझाव बाटे, तो ओकरे लिए कागज कलम ले हुई हैं तो लिख लें जौन बाटे। तो भाई गाँव में भी मोबाइल सब चलावत हैं ना, तो एक नंबर बाँटा है वो पे व्हाट्सएप पे संदेश भेज सकते हैं, वो नंबर है 800-4926-250।
3: एक बार और बता दो भैया।
2: तो भैया हो 800-4926-250।
3: किसान भाई

0: ये नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, ऐप पर जौन है कि आप लोग अपन इच्छा अपन विचार कार्यक्रम से संबंधित जौन भी आपका प्रतिक्रिया हो ओके आप लोग भेज सकते हैं, और आप लोग के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव या कार्यक्रम में परिवर्तन जौन हो करे का प्रयास हुई। बैजू भैया देखा आज हो जुग जमाना इतना बढ़िया हो गया जौन बात कहले है ना कि गांव गांव मोबाइल हर घर मोबाइल भैया बात, तो हो देखा अब तो जानकारी भी क्यों का मुंह ताके के जरूरत नहीं हो
1: ना
0: बैजू
1: ना ना,
0: भाई
1: अब तो कुल वो हमें बाप भैया
0: कुल
1: हो।
0: भाई भैया हो का खेती करे चाहत बाया कैसे तैयारी करा हर चीज का जानकारी ले सकत है।
1: अरे का बाजार भाव चलत बा, कहाँ
0: हाँ
1: मंडी में का भाव
0: बिल्कुल
1: बाटे, हम
0: बिल्कुल
1: अपन
0: बिचौ
1: फसल
0: अब तो
1: कैसे
0: भैया
1: बेच सके।
0: जो बिचौलिया हैं उनकर काम खत्म हो, अब किसान का मेहनत किसान का श्रम किसान के जेब में।
1: हाँ तो हम कही किसान भाई कर फायदा लें, और मौसम की बात किया जाए तो मौसम में देखा बदलाव आवत जात बाटे, वही हिसाब से खेती किसानी काम कर रहे हैं। और जौन खेत खाली हैं हम तो कही एक दाएँ जोताई के छोड़ाए दें तो ज़्यादा फायदा रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया घरे से जब निकला तो तनिक गमछा रुमाल जरूर झोला में
1: हाँ
0: ले ले
1: धूप
0: रहा।
1: तेज होता, अब चले के बेला हो गई तो पंचन से भी आज्ञा ले जाए, तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुमधुर भाषणी तिवारी से भजन और गीत सुनिएगा 7:45 पर। फिल्म संगीत 8:00, 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा और 10:00 खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर कहकशा सुनिएगा और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित जसराज का ख्याल गायन।

रात 9:30 पर कल सुनिए गए मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 पर चर्चा का विषय है जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे औद्योगिक फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता होगी, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन और दोपहर 12:15 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का ख्याल गायन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन होगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45 और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, 11:30 पर, शाम 5:00, रात 8:00 और 10:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में तरुण नंदी के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा 9:50 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 10:30 पर, 10:05 पर कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। अपने फ़ोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में 12:30 पर, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के

0: ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। PAC और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ।

धृतास्था अखिल सुर नदी स्नान कामास्तु भक्ता जीर्णांगाः संतेते विदधति सुतराम नैकदानादि धर्मान्।

क्वचिदपि पृथिवीलेशमात्रानुभागे मातस्तुङ्ग्यायसि प्रियतरवरदा स्वीकुरु स्वास्मदिच्छाम्। क्वचिद् घण्

बुद्धा प्रभुजनरता यत्र संपाद्य कार्यम भक्त्युन्मत्ता प्रयागे निखिल कृषि बला पक्व धीमन्त एते ए धन्ताम विद्ययामि विहित

प्रवित्र मुनि सुपथ जुषाम सद्भुजाम मानवानाम शुद्धांतस्थेन्द्रियाणाम भगवती।

पूता सतीन सपदि सुर नदी सर्ववस्तु प्रदास्यात् मोदिन्यः संतु वाचो निखिल मति मतां सौष्ठौ दार्य प्रिक्ता जीवाधारा नितांतं भवतु बसुमती पुष्टखाद्यान्य दोग्ध्री क्षीरिण्योधेनौ अमुः शिवृति च पृथ्वीमान वेभ्य सुकुंभे सर्वक्षेत्रे सुपुत्रा विदधतु नितराम्।

संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अवधेश द्विवेदी का काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुमधुर भाषिणी तिवारी। आइए पहले सुनते हैं इनसे भजन।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म प्रेम पर्वत से, आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना जानिसार अख्तर की और संगीत दिया है जयदेव ने।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, और आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा को फिल्म निकाह में।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म रंग में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब आइए सुनते हैं फिल्म शर्मिली का ये गाना, आवाज है किशोर कुमार की।

0: और तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इकतसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरक तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और एक डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से 2 रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकई मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं, कुछ रिश्ते आवाज से बनते हैं, कुछ एहसास से, और कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में घर कर जाती हैं। महफिल के इस खूबसूरत शाम में अब पेश है एक ऐसी गजल जिसकी हर पंक्ति इंतजार की नरमी और मोहब्बत की तपिश में भरी हुई है। भूपेन सिंह की गहरी मखमली आवाज और मिताली सिंह की दिलकश अदायगी जब साथ आती है तो गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल। इसके साथ ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
1: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा

0: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए डीएलएफ समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेस को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए, और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थी। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है, और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है, जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना, और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे, और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं, और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभा करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके

0: से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं, कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं, तो सारे उन मानकों पे है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है, खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
0: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं आठों खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा, एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है, जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है, सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए।
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है, कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है, तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है, तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे जूडो में हैं, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ, तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा, अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में, तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है, हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजना है, इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो उसी का भाग है, जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी, ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, 3 उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है, जूनियर स्तर पर, सब जूनियर स्तर पर और सीनियर स्तर पर, हमारे यहाँ एकलव्य क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके 6th प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय

0: स्तर पे है, वो प्रतिभावान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से 4 तीरंदाजी में बच्चे हैं और 2 कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पर।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी उषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ही वर्क करते थे जब ये सफल हुए, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे

बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की आठ टीमें चार स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा।

तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेंग गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्काराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधि मंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपे सिगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉर्डरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर 1 खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैभव

0: सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओ, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख, वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

9.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए पंडित जसराज का ख्याल गायन, राग है बागेश्वरी। तबले पर संगत की है श्री केदार पंडित ने और हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का ख्याल गायन, राग था बागेश्वरी, तबले पर संगत की थी श्री केदार पंडित ने और हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

यहीं समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।